Listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

0: हमेशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

0: Tanisha. Tanisha.
1: तनिष्क में मूवी से रहमान साहब की आवाज में ब्यूटीफुल ट्रैक क्रेजी तरीके से रील्स में सुना है हमने और अभी भी इनफैक्ट चल ही रहा है. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल एफ 106.3 एफएम. तनिषा गिरजी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग लेकर अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान. सितंबर 14th मंडे का दिन. आई होप आपका कल का दिन बहुत बढ़िया रहा हो और अगर कुछ हुआ भी तो इट्स ओके, उसको कल पे छोड़ दो. आज का दिन एकदम टकाटक जाने

0: बिल्कुल यही फीलिंग रहने वाली है पूरे दिन. जी हाँ, और ये वाली तो बाय डिफॉल्ट आती है जो भी चला रही हूँ यार.
1: सुनिए आप इस धूप में कितनी अच्छी लगती है.
0: कितना सुंदर गाया है अरिजीत सिंह ने. ऐसे फेदर से भी लाइट सी आवाज़ है इनकी, इतनी यू नो एकदम हल्की सी प्यारी सी, कोई कष्ट ही नहीं हो रहा है. धूप भले ही अच्छी नहीं लग रही हो पर धूप में

टू ऑल दी अदितीज और नॉन अदितीज दिस ट्रैक इज फॉर एवरीबडी. ठीक है, हंसते रहो, जो भी हो रहा है देखा जाएगा यार. बाकी फिलहाल मैसेज कर दो क्योंकि आई एम वेटिंग फॉर इट. 3311 1063 इज द नंबर. एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग भेज दीजिए मुझे और बताइए कि क्या चल रहा है. और सुनते रहिए रेडियो 1 जियो.

0: to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.
1: Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes!
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
4: हाय दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबुहामूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: अरिजीत सिंह की आवाज में गुस्ताक इश्क से बड़ी खूबसूरत मूवी है यार, अगर नहीं देखी तो आई वुड रिकमेंड देखो इसे। यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम, तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। एंड वी हैव गॉट मैसेजेस ओवर हियर। सो नाजनी जी का मैसेज है, गुड मॉर्निंग, होप यू विल हैव अ डे फिल्ड विद पॉजिटिव एनर्जी, अ फ्यू गुड लव्स एंड दैट सैटिस्फाइंग फीलिंग एट द एंड ऑफ इट दैट यू गिव इट योर बेस्ट। इंशाल्लाह हम सबका ऐसा ही दिन जाए। जी हाँ, साथ में मुझे संधू जी का भी मैसेज आया है, कहते हैं, वेलकम टू द मॉर्निंग विद स्माइल ऑन योर फेस, लव इन योर हार्ट, गुड थॉट इन योर माइंड, विश यू ऑल अ लवली मॉर्निंग एज ऑलवेज, जियो बिंदास। एंड अबरार जी ने भी गुड मॉर्निंग भेजा है फूलों के साथ एकदम खूबसूरत से। साथ में शशिकांत पाटिल जी कहते हैं, वी कैन सेव मनी टू स्पेंड लेटर बट वी कैन नॉट सेव इवन अ सिंगल डे टू लिव लेटर, सो लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट टुडे ओनली। ठीक है, मतलब ऐसे हर रोज के बारे में यही सोचना है कि भाई आज तो मेरे को जो करने का है मैं करके रहूंगी, बिकॉज वी नेवर नो, टाइम का कुछ नहीं पता है यार, कल आप बिजी हो जाओ, नहीं कर पाओ, नहीं ऐसे फन कर पाओ, तो यू नो दैट्स व्हाई। देन देर इज जुल्फी जी, देर इज लाइट अहेड इफ आई स्टे फोकस्ड ऑन टेकिंग वन स्टेप एट अ टाइम। गुड मॉर्निंग, हाँ जी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू। आज का दिन काफी स्पेशल है पता है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट स्टार्ट ऑफ अ रियली अमेजिंग फेस्टिवल इन इंडिया, साथ में आज आयुष्मान खुराना अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड इट इज़ हिंदी दिवस। मैंने सोचा था कि मैं हिंदी दिवस पे ऐसे फुल हिंदी में बात करूँगी, पर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है दोस्तों, पर आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ तो मैंने करना ही है हिंदी दिवस पे, तो खेलेंगे एक गेम कुछ ही देर में, बने रहिए। फिलहाल इन्जॉय करते हैं करण औजला की आवाज़ में बॉयफ्रेंड, स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो बिंदास। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
1: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan. September 18th, 7 PM. And bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers CR Saleem and Rajesh Krishna. Al Rayyan ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में
4: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

निखिल डिसूजा की आवाज में क्रूक मूवी से मेरे बिना बड़ा ही प्यारा गाना है ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा के साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर एंड बिकॉज इट इज हिंदी दिवस टुडे तो आज का जो ज्ञान मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो बिल्कुल ऐसे हिंदी में ही लेकर आई हूँ ठीक है गौर फरमाइएगा मेरी जान सो कहते हैं कि उनकी तासीर बेहद कड़वी होती है जिनकी गुफ्तगू शक्कर जैसी होती है समझ रहे हो बात को समझ रहे हो ना टू मच स्वीटनेस इज नॉट गुड सो इफ यू सी एनीबडी अराउंड यू बीइंग एक्स्ट्रा स्वीट देयर माइट बी अल्टीरियर मोटिव बट देन ऑन द अदर हैंड सम पीपल आर जस्ट स्वीट लाइक दैट पर उन्हें भी बाउंड्रीज पता होती है जब आप देख रहे हो कि कोई बाउंड्रीज क्रॉस कर रहा है इन एनी मैटर यू नो और बहुत एक्स्ट्रा स्वीट है देर हैज़ टू बी अल्टीरियर मोटिव भाई वाइब्स आ जाती हैं यार और अगर वाइब्स आ रही हैं तो उन्हें सुनो उन्हें इग्नोर बिल्कुल भी मत करो बिकॉज सबसे पहले बताए हमें अवेयर क्या करता है हमारा गट हमारी इंस्टिंक्ट कि नो दिस इज़ नॉट ओके दिस और दिस इज़ अमेजिंग ये तो बहुत ही बढ़िया है ये इंसान तो ज़िंदगी में होना चाहिए और ऐसे ही बात करना चाहिए यू नो दैट इनसाइड योर सेल्फ बट हम बस उस फीलिंग को ना इग्नोर करते रहते हैं सो स्टॉप इग्नोरिंग दैट ठीक है और अगर शक्कर जैसी मीठी तासीर आपको नज़र आ रही है तो थोड़ा संभल के रहिए मेरी जान और क्या फिलहाल राशिद अली साहब की आवाज़ में कभी कभी आ देती है ओनली ऑन रेडियो ऑल ऑफ टू यू बिंदास

0: 106.3 FM. Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Al Wakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
0: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
1: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
2: हाय, आई एम लक्ष्मण राव।
3: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
4: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो 106.3 FM।

0: Alicia.
1: राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में कलयुग मूवी से जिया धड़ धड़ बड़ा ब्यूटीफुल ट्रैक है यार, बड़ा ही सुंदर गाया है. Guess what? Still no. It's 33 degrees right now and it feels like 42. It was crazy humid yesterday. Aaj kaha ja raha hai ki less humid hoga aur sunshine hoga badhiya wala. But still, you know, it is too much. To zara apna khayal rakhiyega. Foggy rehne wala hai ye kaha hai. So while driving, please be very careful, meri jaan. Theek hai? Because aap important hain. Aap apna khayal rakhein so that aap apne apno ka khayal rakh paaye. Samajh rahe ho? हाँ जी. सो बी वेरी केयरफुल, डू नॉट यूज योर फोन, सीट बेल्ट लगा कर रखना है, नजर सीधी रोड पे रहनी चाहिए. ओके, नो डिस्ट्रैक्शंस. सेंडिंग फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर फॉर यू. लौट के आती हूँ, कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे. सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ यू. बिंदास
0: रेडियो.

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जी तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड today.

0: Tanisha.
1: अरिजीत सिंह की आवाज में डंकी मूवी से ओमाही ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है. यहाँ पर डंकी मूवी अगर देखी है तो काफी यू नो द बॉन्ड एंड द रिलेशनशिप दे हैव शोन एंड द ट्रेजेडी विकी कौशल वाली यू नो ऑल दोज थिंग्स द स्ट्रगल्स पीपल फेस वो काफी इमोशनल पार्ट है. लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द मूवी वर काइंड ऑफ वेरी सेंसलेस. लॉजिक नहीं था उसमें भी बट स्टिल आई एंजॉयड द मूवी. शाहरुख खान इट इज कम ऑन एंड विकी कौशल वॉज अमेजिंग इन दिस. वेल तनिषा के साथ हैं रेडियो 106.3 FM बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड कदर ने डिसाइड किया है कि जो स्कूल वैक्सीनेशन कैंपेन है उसमें HPV वैक्सीन भी इंक्लूड की जाएगी. और ये जो कैंपेन है इट विल कवर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स. पेरेंट्स डू नॉट हैव टू वरी बिकॉज दे विल रिसीव फुल इन्फॉर्मेशन एंड गाइडेंस अबाउट द वैक्सीनेशन. और ये जो वैक्सीनेशन है इट विल बी प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ कतर स्कूल बेस्ड हेल्थ प्रोग्राम. एंड इट इज़ बेसिकली अ इनिशिएटिव यू नो कि जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है उसको और स्ट्रेंथन किया जाए, उसको और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए और बच्चों को लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए प्रोटेक्शन मिले. एंड दिस इज सच अ ग्रेट इनिशिएटिव. HPV वैक्सीन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन गिवन बिफोर द एक्सपोजर ऑफ द वायरस. सो इट इज रियली गुड फॉर योर किड्स. अगर आप क्यूरियस है कि क्या है तो इसके बारे में आप खुद भी पढ़ सकते हैं. दो आपको स्कूल से सारा का सारा गाइडेंस मिलने वाला है. सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट.
2: कैसी अलग दी कमाल तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार तेनु छड़े.
1: मित्रास का की आवाज में बट इट इज फ्रॉम अ मूवी. सो आजकल ये बहुत हो रहा है ना, ऐसे जो सिंगर्स आ रहे हैं जो कि अपने सिंगल्स निकाल रहे हैं उनके गाने मूवीज में उठा के ले आते हैं एंड देन उनकी आइडेंटिटी उस मूवी से बन जाती है. दैट इज सच अ सैड पार्ट. वो उन सिंगर्स के उन आर्टिस्ट के नाम से बननी चाहिए बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी मेहनत करी है. दैट सॉन्ग हैज़ यू नो इट्स ओन ऑडियंस. देन जब वो ऐसे मास ऑडियंस के पास आ रहा है तो वो और फेमस हो जा रहा है. पर उसकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो हमें मिस नहीं करनी चाहिए यार. नो दैट इज नॉट फेयर एट ऑल.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनिषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: Denisha. Denisha.
1: Denisha. You're listening to Radio Oliver 106.3 FM. Denisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. कोई काम से नहीं गई है लड़की. अब ये लड़की का काम एकदम बढ़िया होने वाला है क्योंकि HMC ने कुछ बहुत बढ़िया लॉन्च कर दिया है. जी हाँ, you're listening to Radio Oliver 106.3 FM. Denisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च कर दिया है डेडिकेटेड स्लीप हेल्थ क्लिनिक. एंड आई थिंक हम सबको बहुत ज़रूरत है, मतलब जिनकी भी नींदें ख़राब हो रखी हैं. सो इट विल बेसिकली फोकस ऑन डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग स्लीपिंग डिसऑर्डर्स इन अडल्ट. इट कैन बी एनीथिंग, यू नो, नींद नहीं आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा आ रही है उसको भी ट्रीट किया जाएगा. एंड हर टाइम ही स्लीपी फील कर रहे हो, यू नो, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपिंग हो रही है और कोई भी नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका समाधान आपको यहाँ मिल जाएगा. एंड दिस इज सो सो सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज आई थिंक स्लीप इज द थिंक नहीं एक्चुअली स्लीप इज द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर, यू नो, हेल्थ. अगर हम ठीक से नींद नहीं ले रहे हैं तो हम किसी काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे और वो हमारी बॉडी में भी इफेक्ट करेगा. यू नो, फिजिकली हम बहुत टायर्ड रहेंगे ऑल द टाइम, एग्जॉस्टेड रहेंगे एंड देन थिंग्स कीप एडिंग ऑन टू इट. So whenever you hear your parents or you know somebody in the family keep saying ki raat ko phone nahi use kara karo, so jaya karo waqt pe, wo bahut achhi advice hai dosto, wo sun leni chahiye. And I still am angry at myself ki bhai bachpan mein jab mummy bolti thi beta so jao time se to mujhe rona aa jata tha ki nahi mujhe sula ke aap ghoomne chale jaoge. Aur ab main chahti hu ki aap ghoomne chale jao, main sona chahti hu पर वक्त नहीं है. सो लाइफ कम्स इन अ फुल सर्कल एंड दिस इज सच अ ग्रेट इनिशिएटिव क्योंकि बेटर स्लीप कैन सपोर्ट एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन, मूड एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ. वो बहुत बेहतर हो जाएगा, आप काम में बढ़िया ध्यान दे पाओगे. यू नो, यू विल फील एनर्जाइज्ड एंड रिफ्रेश्ड अगर आप ठीक से नींद ले पाते हो तो. सो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी सारी सॉल्व हो जाएंगी इससे. सो दैट्स अ रियली अमेजिंग इनिशिएटिव. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द प्रोग्रेस वी गोना मेक आफ्टर दिस. Really. Sending Zabardast hit your way. Stay tuned and Jio Bindas.
0: Ab suniye, Olive ka Zabardast hit. Zabardast hit.

0: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में
0: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

अलका याग्निकोशान की आवाज में कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। मैं बताती हूँ क्या हुआ है। जिस तरह से कतर ने एक बेंचमार्क ऐसे बना रखा है ना स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करने में, जो कि कोई नहीं तोड़ पाएगा, इवेंचुअली मुझे लग रहा है कि अब उन स्पोर्ट्स इवेंट्स को और यू नो एनीथिंग हर चीज में जीतने की भी ठान ही रखी है। जी हाँ, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 11.6.3 एफएम, दिनेश आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। सो जो फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप चल रहा था, उसमें कतर ने फाइनल डे पे 3 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। मेडल्स आई डोंट नो, समटाइम्स हो जाता है यार, माफ करना। सो या 3 गोल्ड मेडल जीते हैं एंड इट वाज अ स्ट्रांग फिनिश बाय कतर एंड काफी बढ़िया खेला है, खेला नहीं परफॉर्म किया है सारे एथलीट्स ने इस चैंपियनशिप में। जो मेडल्स आए हैं वो कतर यूनिवर्सिटी के एथलीट्स के थ्रू ही आए हैं एंड ये जो अचीवमेंट है हाइलाइट्स द स्ट्रेंथ एंड टैलेंट ऑफ कतर्स यंग एथलीट्स एंड राइट नाउ थिंग्स आर इन प्रोग्रेस। यू नो अभी ये तो सेट हो गया कि भाई कतर से बेहतर कोई भी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता स्पोर्ट इवेंट्स, और अब कोशिश ये है कि कतर से बेहतर कोई खेल भी नहीं सकता वहाँ पहुँचने की। इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे यार। द काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स यू नो गवर्नमेंट इज टेकिंग, अथॉरिटीज आर टेकिंग फॉर अस, दैट इज़ एब्सोल्यूटली कमेंडेबल। यू नो स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे बहुत बढ़िया बढ़िया फैसिलिटीज़ मिल रही हैं सो दैट वो खुद चूज कर पाएँ अपना पाथ। इफ़ दे वॉन्ट टू गो इन स्पोर्ट्स तो उनको बेस्ट फैसिलिटी वहाँ पर मिल रही है, ट्रेनर्स मिल रहे हैं। सो दिस इज़ रियली कूल यार, इस पर तो फील गुड होना बनता ही।

0: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan. September 18th, 7 PM. And bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: महमूद और राघव चैतन्य की आवाज में माशू का कॉकटेल टू से सुना आपने ओनली ऑन रेडियो 11.3 एफएम। तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर। एंड एज आई सेड, आज है आयुष्मान खुराना का हैप्पी बर्थडे एंड दैट्स व्हाट वी आर सेलिब्रेटिंग। हर घंटे आप उनका एक बहुत ही खूबसूरत सुपरहिट गाना सुनने वाले हैं। फिलहाल एक प्यारा सा गाना चलाऊंगी मैं, लेकिन उसके पहले भाई आयुष्मान खुराना जितने कमाल एक्टर हैं और जितने स्वीट इन पर्सन है, बाय द वे उनकी शुरुआत भी रेडियो से ही हुई थी। ही वॉज एन आरजे टू एंड देन वो एक्टिंग में वीजे बन गए एंड देन उसके बाद वो एक्टिंग में गए और काफ़ी वर्सेटाइल एक्टर हैं ये तो हमें पता ही है। उनका फिल्मोग्राफी उठा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, बट क्या खूबसूरत लिखता है वो इंसान। ये सुनिए आयुष्मान खुराना का लिखा हुआ है, ठीक है। तुम्हें शहर की रिवायत से अनजान हो दोस्त, तुम इस शहर की रिवायत से अनजान हो दोस्त, यहाँ याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। ओए होए होए होए होए, कितना कमाल। और एक और बहुत खूबसूरत चीज लिखी उन्होंने, बहुत सारा लिखा है बाय द वे। जिंदगी ने बहुत समझदार बना रखा है, मुझे आज बस जिद करने का मन है। कभी कभी होता है ना कि हर चीज अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट आज नहीं, आज तो अपनी मर्जी का ही करना है। क्यों मैं किसी के लिए सुनूं, क्यों मैं किसी के लिए रुकूं? ये वो फीलिंग को बड़ी खूबसूरती से एक्सप्रेस करता है। और फॉर ऑल द पीपल हु हैव कम फ्रॉम यू नो स्मॉल टाउन्स एंड यहाँ कतर में आके बड़ी बड़ी इमारतें देखकर बड़े खुश हो जाते हैं, चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाती है, उसके लिए कहते हैं बात बात पे मुस्कुराता है ये आदमी, किसी छोटे शहर से आया हुआ लगता है। यार बहुत सुंदर है यार, सेंडिंग आयुष्मान खुराना का खूबसूरत गाना चन किता ओनली ऑन रेडियो ऑलिव जियो बिंदास।
1: आजा साड़ी गली आजा कहने से लेकर
2: साड़ी गली आजा सानू
1: नैना का कसूर ढूंढने तक,
2: नैना दा क्या कसूर, कसूर, कसूर।
1: गिटार की धुन पर जिसने हर कहानी को गीत बनाया और हर आम इंसान की जिंदगी को बॉलीवुड के पर्दे पर खास दिखाया, आज उसी मल्टी टैलेंटेड स्टार आयुष्मान खुराना को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: and number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jia
1: Bindas. Ready?
2: Ready!
1: To learn!
2: Yes.
1: To play!
2: Absolutely!
1: To grow!
2: With Maserati!
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
2: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: Radio Olive 106.3 FM Gio Bendaz.
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 p.m. And bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers C.R. Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: Hi, I'm Vivek Anand Oberoi. You're listening to Radio Olive, Gio Bindas.
3: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
4: Malabar Golden Diamonds Bindas Morning.
5: मलाबार गोल्डन डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में
6: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

0: Tanisha.
1: तुम क्या मिले इन द वॉइस ऑफ अरिजीत सिंह एंड श्रेया घोषाल फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. सो तुम क्या मिले वाली लाइन तो इंटरनेट के लिए परफेक्ट जाती है ना, टेक्नोलॉजी के लिए भी परफेक्ट जाती है. लेकिन जो इस गाने में एक और लाइन है, मुश्किलें हैं तुम ही से या तुम ही हो मुश्किलें, वो भी परफेक्ट बैठता है भाई. You're listening to Radio 11.6.3 FM. Tanisha आपके साथ विदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली ने एक बहुत ही बढ़िया कैंपेन जो है वो लॉन्च किया है, डिजिटली अवेयर फैमिली कैंपेन, जिसमें वो बेसिकली फोकस करेंगे बच्चों और फैमिलीज को एडुकेट करने में, अवेयर करने में कि रिस्पॉन्सिबली किस तरह से डिजिटल वर्ल्ड में कदम रखा जाए, किस तरह से टेक्नोलॉजी को या सोशल मीडिया को यूज किया जाए, जस्ट टू मेक देम अवेयर टू बी safe and sound. And it is such a great initiative. It will be really helpful for everybody out there. Because kids are very smart these days. And utna hi smart parents ko hone ki bhi zarurat hai. And kai baar hum apni life ki uljhanon mein itna uljhe hote hain ki hum technology ko seekhne, jitna kaam ka hai utna seekh lete hain. Extra nahi jante. Like I take my mother's example. Unhe kaafi saari cheeze main abhi bhi bata rahi hoti hu. Jab bhi unhe zarurat padti hai, then she calls me ki beta ye kaise karte hain phone pe. So you know, that keeps going on. You have to keep learning. So just be aware and you know, be well versed with the digital world so that you can safeguard your kids and give them proper guidance and education about that. Imran Khan ki awaaz mein amplifier. यार इस टाइम पे जो भी म्यूजिक आ रहा था ना, बहुत कमाल था यार. ब्यूटीफुल ट्रैक. ऑल दीज ट्रैक्स आर कमिंग अप योर वे ओनली ऑन रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास. कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
3: कूल सॉन्ग.

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our sixth branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning.
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

0: Danisha.
1: आनंद राजा आनंद और सुनिधि चौहान की आवाज में कांटे मूवीज इश्क समंदर ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर एंड हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं आपको एक मुहावरा सुनाऊंगी, बट द ट्विस्ट इज कि वो मुहावरा मैं बोलने वाली हूँ इंग्लिश में एंड आपने फिगर आउट करना है कि वो कौन सा हिंदी का फेमस मुहावरा है और मुझे बताना है, ठीक है? एंड आई डोंट नो हाउ एंड फ्रॉम वेयर, आई थिंक फ्रॉम माय नानीमा आई गॉट दिस हैबिट। मुझे बड़े मुहावरों में बात करने की आदत है, लाइक यू नो इन नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस आई वुड जस्ट यूज वन मुहावरा एंड पीपल वुड लाइक व्हाट, एंड यू नो दोज हिंदी वाले मुहावराज। सो माई नानी यूज टू यूज अ लॉट और वहाँ से आई थिंक मैंने वो कैच कर लिया है। सो दिस मुहावरा इज इंग्लिश में जो मैं बोलने वाली हूँ आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे बताना है कि कौन सा वाला है ये, ठीक है? सो द मुहावरा इज कांट डांस सेज द कोर्टयार्ड इज क्रूकेड, कांट डांस एंड सेज द कोर्टयार्ड इज क्रूकेड। कौन से वाला मुहावरा है ये जरा बताएं मुझे। 3311106 पर मैसेज कर दो या फिर कॉल कर दो 4444106 पर। और अगर आपको मुहावरा आ जाए, यू नो समझ में आ जाए कि कौन सा वाला है, तो साथ में मीनिंग भी बता देना, ठीक है? कांट डांस एंड सेज द कोर्टयार्ड इज क्रूकेड।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Ready? To learn,
2: yes.
1: To play,
2: absolutely.
1: To grow,
2: Maserati.
3: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस Maserati फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ.
4: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स.
3: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक Maserati है आपकी पूरी

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनिषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: Pushpa movie se Shivalli in the voice of Javed Ali only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha ke sath bindas morning chal rahe hain yahan par. And Ayushman Khurana ka happy wala birthday hai aaj. To abhi kuch der mein unka ek special gana bhi chalane wali hu main. Ek wari sath mein as I told you ki unhone bahut kuch khoobsurat khoobsurat shayriyan likhi hain. So ek post pe unhone likha tha, zamane mein tanhaiyon ka alam to dekhiye. ज़माने में तन्हाइयों का आलम तो देखिए, हम खुद को तकते हैं ले ले के सेल्फियाँ. काफ़ी ऐसे रिलेटेबल हो गया आज के ज़माने में. एंड दिस वन इज़ सो ब्यूटीफुल. सो इट सेज, कितना आसान था बचपन में सुलाना हमको, कितना आसान था बचपन में सुलाना हमको, नींद आ जाती थी परियों की कहानी सुनकर. और अब let's not even go there. Coming back to my Hindi Divas wala question. So मैंने आपको एक मुहावरा सुनाया था, पर ट्विस्ट ये है कि वो हिंदी का मुहावरा मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सुनाया है और आपने मुझे उसका एक्चुअल हिंदी वाला क्या मुहावरा है वो बताना है. सो आई हैव ओनली गॉट वन करेक्ट आंसर हियर, बाकी कोशिश जारी है पर गलत हो रहा है. तो एक और मौका देती हूँ, इसके बाद आके तो फिर मैं बता ही दूंगी. जी हाँ. सो द मुहावरा जो कि एक्चुअली हिंदी में है, उसे मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, वो है कांट डांस एंड सेज द कोर्टयार्ड इज क्रूकेड. कांट डांस एंड सेज द कोर्टयार्ड इज क्रूकेड. ये कौन सा हिंदी का फेमस मुहावरा है ये आपने मुझे बताना है. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दें 4444 1063 पर. और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM. जियो बिंदास मेरी जान.
1: आजा साड़ी गली आजा कहने से लेकर
2: साड़ी गली आजा सानू
1: नैना का कसूर ढूंढने तक,
2: नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर.
1: गिटार की धुन पर जिसने हर कहानी को गीत बनाया और हर आम इंसान की जिंदगी को बॉलीवुड के पर्दे पर खास दिखाया, आज उसी मल्टी टैलेंटेड स्टार आयुष्मान खुराना को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ

0: हमेशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में
3: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

0: Alicia. Alicia.
1: KK और सुनिधि चौहान की आवाज में साथ में हार्ड कोर फ्रॉम द मूवी अजब प्रेम की गजब कहानी से सुना आपने मैं तेरा धड़कन तेरी ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनीजा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. और मैंने पूछा था एक हिंदी का मुहावरा इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एंड यू हैड टू गिव मी द करेक्ट आंसर. सो जो ट्रांसलेशन था इंग्लिश में वो ये था कि कांट डांस एंड सेज द कोर्टयार्ड इज क्रूकेड एंड वी हैव गॉट द आंसर्स.
2: Hi, good morning. This is Pradeep here.
1: Good morning.
2: I think जो प्रभाव अपने बताया है वो मेरे ख्याल से ऐसा है कि नाच ना जाने आगन टेढ़ा.
1: एकदम करेक्ट. एंड नॉट जस्ट प्रदीप, वी हैव आदिल, आयुषी और मोहम्मद, शरद, अरिजीत, अस्मा, अंसार, देन देर इज वेट मोर स्क्रोल कर रही हूँ यार, सबर करो थोड़ा सा. देन साथ में इमाद इज देर, ए पी का मैसेज है एंड देन किसी के नाम में सिर्फ इमोजी, इट इज डॉल्फिन इमोजी. यार ये सब मत करो ठीक है, नाम लिखो अपना. थैंक यू सो मच, करेक्ट आंसर दिया है सब ने. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. एंड इस प्रोवर्ब का बेसिकली मीनिंग ये होता है अ पर्सन हु डजंट नो हाउ टू डू थिंग्स प्रॉपरली लेकिन यू नो सर्कमस्टांसेस पे ब्लेम डाल देंगे या फिर दूसरों के ऊपर ब्लेम डाल देंगे या फिर उनके पास यू नो रिसोर्सेज इनफ नहीं थे उस पे ब्लेम डाल देंगे. एंड दैट्स वेयर यू कैन यूज दिस प्रोवर्ब नाच न जाने आंगन टेढ़ा. कोई ना कोई तो ऐसे जहन में आ ही रहा होगा जो इस प्रोवर्ब के लायक है, है?

0: के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
1: हाय मैं हूं दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
2: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Malabar Golden Diamonds Bindas Morning.
4: मलाबार गोल्डन डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्डन डायमंड्स सफारी मॉल में
0: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड it today.

0: Alisha.
1: दुश्मन मूवी से सुना आपने ये खूबसूरत गाना ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM. तनिषा है आपके साथ, बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. और भाई दिलजीत दोसांझ को तो मैं क्या ही कहूँ, ये बोलकर भी थक चुके हैं अब तो हम कि एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे भाई. सो दिस टाइम दिलजीत हैज क्रिएटेड हिस्ट्री वंस अगेन. सो ही परफॉर्म्ड यस्टरडे एट वेम्बली स्टेडियम, एंड वो सबसे बड़ा स्टेडियम है, ठीक है. और वो दिलजीत दोसांझ इज द फर्स्ट पंजाबी आर्टिस्ट टू हेडलाइन ओवर देयर. एंड इनके पहले यू नो माइकल जैक्सन, प्रिंस, एमिनम, अडेल, बियॉन्से, एड शीरन, टेलर स्विफ्ट, बीटीएस, मेसी, ऑल दीज पीपल हैव परफॉर्म्ड देयर, यू नो, गिव देयर प्रेजेंस, पीपल हैव कम टू मीट देम देयर. एंड दिस टाइम इट वॉज दिलजीत. सो 92,000 की कैपेसिटी है उस स्टेडियम की, एंड इट वॉज फुल, क्रेजी फुल. जी हाँ, दिलजीत का अभी इंडिया ऑरा टूर चल रहा है, एंड दिस वॉज हिज वेम्बली स्टेडियम. इट वॉज एब्सोल्युटली क्रेजी, एंड द वीडियोज आर यू नो ट्रेंडिंग राइट नाउ ऑन सोशल मीडिया. आप देखोगे जो दिलजीत के फेस पे एक सेटिस्फैक्शन, प्राउड एंड आई हैव डन इट वाला एक्सप्रेशन है, इट इज सो ब्यूटिफुल टू सी. And you know, the way he's talking over there, representing the country, representing the culture and the art and everything, it is so amazing. It'll give you goosebumps. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा. And as usual, दिलजीत के बारे में जितनी तारीफ करो कम ही है. तो बस गाना चलाते हैं और enjoy करते हैं उनकी इस कमाल की achievement को, and bringing India on that stage and showing the Punjabi culture and everything. It was beautiful, yeah. Let's listen to this track, Diljit Dosanjh ki awaaz mein, only on Radio Olive. Chiyo, Bindaas meri jaan.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और रिमाइंडर दे रहे आई हूँ कि भाई अगर अभी तक हमें सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ फॉलो कर लो. रेडियो ऑलिव डॉट क्यू इज दी हैंडल. इंस्टाग्राम, फेसबुक, एवरीवेयर, यू नो, यूट्यूब पर फुल वीडियोज जो इंटरव्यूज हम करते हैं वो आप देख सकते हैं और साथ में स्नैपचैट, टिकटॉक, एवरीवेयर. ओके जी. Along with that, I wanted to remind all the HRs or the bosses listening to me right now. अगर आपको लग रहा है कि आपकी जो टीम है बहुत मेहनत कर रही है and they are in need of a break, तो छुट्टी देने की जरूरत नहीं है यार. We can bring the break to your office. जी हाँ, happiness lounge लेकर आ जाएंगे हम आपके ऑफिस. बस आपने मुझे मैसेज कर देना है 3311063 पर. Then we will come with our team. बहुत सारे games खेलेंगे, fun, मस्ती, 1 or 2 hours एकदम, you know, refresh और recharge हो जाएगी आपकी टीम और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी एंड दे विल ऑल्सो फील बेटर. सो इट्स अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस. यस, तो फटाफट से मैसेज कर दो 3311063 पर. सेंडिंग शिराज उपल की आवाज में रांझा मूवी से टाइटल ट्रैक. स्टे ट्यून्ड, बिंदास मेरी जान.

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में। अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं, सिर्फ मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड it today.

0: You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो गया मेरी जाने का मेरी जान. मिलते हैं कल सुबह 6 बजे. आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है. हैव एन अमेजिंग डे टू योर सेल्फ. और थोड़ा सा ऐसे अप डाउन हो ना तो उसको लेकर ऐसे बैठने की जरूरत नहीं है. जाने दो, इट्स ओके. बड़े बड़े देशों में छोटी-छोटी बातें होती रहती है. ये चीज़ें याद रखने की है. और एक और चीज़ याद रखनी है आपने कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. एंड इफ़ यू हैवन फॉलोड अस येट तो फटाफट से जाओ फॉलो कर लो. radio.qs दी हैंडल. यू माइट मिस आउट ऑन समथिंग अगर फॉलो ना करो तो. जल्दी से कर लो. फिलहाल जल्दी जल्दी भेज रही हूँ आयुष्मान खुराना स्पेशल मोरनी बन के इन द वॉइस ऑफ गुरु रंधावा एंड नेहा कक्कर फ्रॉम द मूवी बधाई हो. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास.
1: आजा साडी गली आजा कहने से लेकर
2: साडी गली आजा सानू
1: नैना का कसूर ढूंढने तक
2: नैना दा क्या कसूर बे कसूर बे कसूर.
1: गिटार की धुन पर जिसने हर कहानी को गीत बनाया और हर आम इंसान की जिंदगी को बॉलीवुड के पर्दे पर खास दिखाया. आज उसी मल्टी टैलेंटेड स्टार आयुष्मान खुराना को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे.

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है।

Good morning. You are listening radio all at 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Our show ka naam Yes Life Must Hai. Har naye din ke saath ek nayi energy, naye conversations, naye thoughts, naye observations aur inhi sari cheezon ke saath main aa chuki hu aapke paas Life Must Hai lekar. Kabhi aapne notice kiya hai? Hum kehte hain main to raat ko 7 ghante soti hu. Lekin subah uthkar halat aisi hoti hai jaise neend nahi koi night shift karke aaye hain. Bahut baar hota hai mere saath aisa. To sawal ye hai ki kya sirf hours jo hai matlab jo ghante गिन रहे हैं वो हेल्दी स्लीप है. इसी के लिए कतर में हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन ने अडल्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड स्लीप हेल्थ क्लिनिक शुरू की है. यहाँ अलग अलग स्लीप डिसऑर्डर्स की असेसमेंट और ट्रीटमेंट पर फोकस किया जाएगा. और मुझे ये टॉपिक इसीलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि हम स्लीप को अक्सर लग्जरी समझ लेते हैं. काम ज़्यादा है, नींद कम कर लो, सीरीज इंटरेस्टिंग है, एक एपिसोड और देख लो, फ़ोन हाथ में है, बस 5 मिनट और चला लेते हैं. लेकिन हमारा दिमाग और बॉडी रात में कोई ऑफ मोड पर नहीं जाते. स्लीप के टाइम पर ब्रेन, मेमोरी, लर्निंग और बॉडी की रिकवरी जैसी बहुत सारी प्रोसेस में काम करता है. यानी नींद ने हमें इनएक्टिव नहीं होना है, हमारा बॉडी जो है वो मेंटेनेंस मोड में होता है. और शायद इसीलिए मैं कम सोकर भी मैनेज कर लेती हूँ, हमेशा कोई अचीवमेंट नहीं है. सो आज आप अपना स्लीप जो ऑडिट है वो ज़रूर कीजिए. आपको ज़्यादा प्रॉब्लम किससे है, सोने में देरी होती है या फिर सोने के बाद फ्रेश नहीं उठते? व्हाट्सएप पर बताइए. और नंबर इज सेम 3311063. आपकी नींद की सबसे बड़ी दुश्मन कौन है, फोन, थॉट्स, वर्क या फिर कोई अलार्म? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ਉਹ ਪੱਟ ਦੇ ਤੂੜਾ।
1: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਰੇਡੀਓ ਕਾਲਿਵ 106.3 FM।
2: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
3: गुलराज सिंह
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
3: जियो बिंदास।
1: Olive Sonor Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

0: हेल्थ की बात हो और एवोकाडो का नाम ना आए, ऐसा तो आजकल पॉसिबल ही नहीं। हर कोई रील में आपको ब्रेकफास्ट में एवोकाडो खाता हुआ दिख जाएगा। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस लाइफ मस्त है। एवोकाडो को ना हेल्थ फूड की कैटेगरी में रखा जाता है, मतलब हेल्दी फूड जिसे कहते हैं, और ये बिल्कुल सही भी है। लेकिन इंस्टाग्राम पे हेल्दी दिखने वाली चीज को न्यूट्रिशनली यूजफुल फूड हमेशा एक ही चीज होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 100 ग्राम एवोकाडो में लगभग 2.1 mg विटामिन ई और 28 ग्राम सनफ्लावर सीड्स में करीब 7.4 mg विटामिन ई जो है वो होता है। और विटामिन ई कोई ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो सिर्फ ब्यूटी विटामिन समझकर छोड़ दिया जाए। ये एंटीऑक्सीडेंट है और बॉडी की सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो हमें लगता है कि एक एवोकाडो खा लिया मतलब बहुत बढ़िया हो गया, बट अगर आप थोड़े से सनफ्लावर सीड्स भी खा लोगे ना कभी कभी अपने ड्राई फ्रूट्स में या अपने किसी लड्डू में डालकर, तो वो इससे भी ज़्यादा आपको विटामिन देने वाला है। सो इंटरेस्टिंग बात यह है कि नट सीड्स और वेजिटेबल ऑयल्स विटामिन ई के अच्छे डाइटरी सोर्सेज हैं। यानी कभी कभी हमें सुपर फूड ढूंढने के लिए सुपरमार्केट के फैंसी आयल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे किचन में पहले से ही सब कुछ छोटे छोटे फूड्स जो हैं वो काफ़ी होते ही हैं। लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट है कि किसी एक फूड को मिरेकल फूड मत समझिए। न्यूट्रिशन हमेशा पूरी डाइट को लेकर ही मिलता है, मतलब आपने कभी कुछ खा लिया कभी कुछ खा लिया। सो यू टेल मी कि आपको एक्चुअली क्या लगता है, क्या सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, पीनट्स या फिर सेसमे या फिर सनफ्लावर सीड्स या फिर मखाना? क्या आपको लगता है कि यार किचन में है बट ऑल दीज आर वेरी अंडररेटेड हीरोज? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर इज सेम 3311063। स्टे ट्यून, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करे डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली की

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

0: एमा क्लीन की एक नई किताब है नॉवल स्विट्सी, इस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रखी है क्योंकि उसे बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट में पहुंचने का सौभाग्य मिला है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम यस लाइफ मस्त है। कहानी ना एक बहुत ही एजड आदमी की है जिसका नाम है डेविड। उसके इर्द गिर्द ही घूमती है जिसकी मेमोरी धीरे धीरे उसके साथ खेल रही होती है। वो एक आखिरी यात्रा पर निकलता है और रास्ते में पुरानी यादें, रिश्ते और पुरानी जिंदगी के अधूरे हिस्से उसके सामने आते हैं। लेकिन मुझे इस किताब का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा जो है वो इसका प्लॉट नहीं बल्कि मेमोरी का आइडिया लगता है। हम सोचते हैं कि हमारी मेमोरीज जो है हमारी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है, लेकिन मेमोरी कोई हार्ड ड्राइव तो है नहीं। हम हर बार कोई घटना याद करते हैं तो हमारा दिमाग उसे थोड़ा रिकरेक्ट करता है, रिकन्स्ट्रक्ट करता है। इसीलिए दो लोग एक ही घटना के बारे में बिल्कुल अलग अलग कहानी सुना सकते हैं। और शायद इसी वजह से एज के साथ हम सिर्फ अपने पास्ट को याद नहीं करते, हम अपने पास्ट के मीनिंग को बदलते रहते हैं। एक घटना जो 20 साल पहले हुई थी और उस एज में आपको लगा था कि ये फेलियर है, शायद 40 की उम्र में वो आपको टर्निंग पॉइंट लगे। सो आज का सवाल बहुत ही ब्यूटीफुल है। आपकी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी घटना है जिसका मतलब आज आपको बिल्कुल अलग समझ में आता है? कहानी वही है, बस नरेटर चेंज हो गया है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: साडी गली आजा कहने से लेकर
2: साडी गली आजा सानू
1: नैना का कसूर ढूंढने तक,
2: नैना दा क्या कसूर, कसूर, कसूर।
1: गिटार की धुन पर जिसने हर कहानी को गीत बनाया और हर आम इंसान की जिंदगी को बॉलीवुड के पर्दे पर खास दिखाया, आज उसी मल्टी टैलेंटेड स्टार आयुष्मान खुराना को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

भाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

0: अगर आपको कोई बोले कि आज एक ऐसी विमेन की कहानी पढ़िए जो समुद्र पर शिप्स चलाती थी और इसी के साथ मतलब काफ़ी स्ट्रांग विमेन थी, सो आप कहोगे कि किस वेब सीरीज़ की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये हिस्ट्री है। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है येस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। सो एक नई हिस्टोरिकल नॉवल आई है द पायरेट क्वीन, अभी 8th of September को ही रिलीज हुई है। ये आयरलैंड की लेजेंडरी फिगर जो है उससे इंस्पायर्ड है और एक ऐसी विमेन जिसकी ज़िंदगी जो है वो एडवेंचर नॉवल से कम नहीं थी, मतलब पूरे टाइम आपको कोई ना कोई एडवेंचर देखने को मिलेगा। और मुझे इस हिस्टोरिकल फिक्शन की ये बात बड़ी पसंद आई कि हम हिस्ट्री को ना अक्सर किंग्स और डेट्स से याद रखते हैं, लेकिन हिस्ट्री में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी थे जिन्होंने उस समय के जो रूल्स हैं उनको चेंज किया था। सो कहानी में बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सवाल कि हम इतिहास में किन लोगों को याद रखते हैं और किन्हें भूल जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री ना सिर्फ वही नहीं होती जो टेक्स्ट बुक में या चैप्टर में होती है, बहुत से एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइव्स जो हैं वो फुटनोट बनकर रह जाती है। सो बॉलीवुड को अगर बात करूँ, बॉलीवुड को हिस्ट्री की किस यू नो विमेन पर फिल्म बनानी चाहिए तो बताइएगा मुझे। और आप मुझे बताइए कि आपको जो आप जब आप छोटे थे तब हिस्ट्री पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था या मैथ्स, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे मैथ्स से बिल्कुल ऐसे दूरी बना के रखना पसंद था। यू टेल मी योर फेवरेट सब्जेक्ट। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour.

कहते हैं कि पुरानी बातों को अक्सर छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर मैं बॉलीवुड की बात करूं तो पुरानी बातें ही हैं जो हमें बहुत खुशी देती हैं। सो ये जो पूरा टाइम है, यहाँ पर मैं बात करती हूँ कुछ रेट्रो टाइम की। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। आज कोई फिल्म अनाउंसमेंट होती है तो पोस्टर पर 5 बड़े नाम हो और रिएक्शन आता है, ओहो मल्टी स्टारर। लेकिन इसका बड़ा बॉलीवुड वर्जन जो है वो नया नहीं है। 1965 में यश चोपड़ा की वक्त आई और इसे ना हिंदी सिनेमा की पहली मेजर मल्टी स्टार फिल्म से गिना जाता था। इसमें बलराज साहनी, सुनील दत्त, राजकुमार, शशि कपूर, साधना और शर्मिला टैगोर जैसे बहुत बड़े स्टार्स थे। अब सोचिए, उस टाइम का सिनेमा आज की तरह सोशल मीडिया पर नहीं था, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज हर घंटे नहीं आते थे, फिर भी ऑडियंस को पता था कि कौन बड़ा स्टार है। और वक्त ने एक और चीज पॉपुलर की, लॉस्ट एंड फाउंड फैमिली फॉर्मूला। एक परिवार बिखरता है, साल गुजरते हैं, लोग अलग अलग जिंदगी जीते हैं और फिर किस्मत उन्हें वापस एक जगह पर लेकर आ जाती है। अब इसे आज से जोड़िए, आज भी बॉलीवुड में फैमिली सेपरेशंस, रीयूनियन और डेस्टिनी वाली कहानियां चलती हैं। यानी टेक्नोलॉजी बदल गई, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आ गए, लेकिन ह्यूमन इमोशंस वही के वही है, क्योंकि ऑडियंस को आखिरी में CGI नहीं रुलाता, रुलाता है रिश्ता। सो आज की कौन सी ऐसी मल्टी स्टारर फिल्म है जो आपको लगता है कि 1965 में जो लोगों को भी मतलब मजा आ गया था देखने में। सो यू टेल मी 3311063 पर कि भाई कौन सी ऐसी मल्टी स्टारर मूवी है जो आपको लगता है कि 1965 के लोगों को अभी भी पसंद आ सकती है आज की मूवी। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

छोटी सी कक्षा में दीवारों पर अक्षर लिखे हैं, वो अक्षर जो अपने साथ कहानियां लेकर आते हैं, हमारे देश के गीत और वो बोली जो लाखों को जोड़ती है। कभी एक शिक्षक ने एक छोटे से शब्द से संस्कृति समझाई और आज भी एक बच्चा अपनी पहली कविता हिंदी में पढ़ता है, अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ। हिंदी दिवस 14 सितंबर हमें याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं, यह हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और एक पुल है जो पीढ़ियों को जोड़ता है।

0: मैंने थोड़ी देर पहले पूछा कि भाई 1965 के लोगों को आज भी कोई अगर बॉलीवुड की मल्टी स्टारर मूवी पसंद आएगी तो वो कौन सी होगी, और लोगों ने बहुत ही फनी फनी से आंसर किए, और उसमें सबसे ज़्यादा था स्टूडेंट ऑफ द ईयर जैसी मूवीज आ रही हैं मल्टी स्टारर में, तो आप क्या दिखाओगे 1965 वाले लोगों को। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है। आप सॉन्ग सुनिए, है ना, वो जो गाना है ना मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, 1969 में आया था, ठीक है, राजेश खन्ना, किशोर कुमार और दार्जिलिंग की वो ट्रेन। 57 साल बाद भी ये गाना सिर्फ पुराना नहीं लगता, इस साल ये सॉन्ग जो है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये यूट्यूब पर फिर से ट्रेंड हुआ है, 21 मिलियन से ज़्यादा व्यूज पार कर चुका है, और ख़ास बात ये है कि नई जनरेशन भी इसे सुन रही है, मतलब उनकी प्लेलिस्ट में ये गाना है। इस सवाल मतलब ये जो अब सवाल है, ये गाना अच्छा है ये नहीं है, ये तो है ही नहीं। पुराना गाना नई जनरेशन को अट्रैक्ट क्यों करता है, क्योंकि मेलोडी में टेक्नोलॉजी की एक्सपायरी डेट नहीं होती, आपकी एज 18 हो या 58, मतलब 18 हो या 58, एक अच्छा हुक, एक मेमोरेबल वॉइस और एक सिंपल इमोशन हमेशा काम करता है। और किशोर कुमार की आवाज़ की खासियत ही यही है कि वो टेक्निकली सिर्फ गा नहीं रहे थे, वो कैरेक्टर्स को आवाज़ दे रहे थे। राजेश खन्ना स्क्रीन पर रोमांटिक हीरो थे, लेकिन ऑडियंस के कानों में उनका रोमांस किशोर कुमार की आवाज़ बन गया। इसे कहते हैं स्टार और प्लेबैक सिंगर का ऐसा रिश्ता जो सिनेमा की पहचान बन जाए। सो आज अपने फ़ोन की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्या आपके सबसे पुराने बॉलीवुड सॉन्ग्स में से क्या ये गाना भी है? नाम भेजिए और बताइए कि कौन सा गाना आपका फेवरेट है अगर पुराने गानों की बात की जाए। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है लाइफ मस्त है।
1: रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: नैना का कसूर ढूंढने तक।
1: नैना दा क्या कसूर, बे कसूर, बे कसूर।
0: गिटार की धुन पर जिसने हर कहानी को गीत बनाया और हर आम इंसान की जिंदगी को बॉलीवुड के पर्दे पर खास दिखाया, आज उसी मल्टी टैलेंटेड स्टार आयुष्मान खुराना को रेडियो ओलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

फैशन की जब भी बात आती है तो कुछ नया वर्ड तो सीखने को मिल ही जाता है। एक नया वर्ड मैंने आज सुबह ही देखा और सुना जिसका नाम था बुलेरो जैकेट। एंड आई वाज लाइक, ये कौन सी जैकेट है भाई? गूगल करना पड़ गया, चैट जीपीटी से पढ़ा, उसके बाद समझ में आया अच्छा इसे बुलेरो जैकेट कहते हैं। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। अब फैशन का मूड कुछ और है, जो आपको सूट करता है अपने तरीके से पहनिए। फॉल 2026 के फैशन फॉरकास्ट में इंडिविजुअलिटी, एक्सप्रेसिव कलर्स, रिच टेक्सचर और पर्सनालिटी ड्रिवन पीसेस पर काफी जोर दिया गया है। यानी परफेक्ट यूनिफॉर्म ट्रेंड की जगह पर्सनल स्टाइलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसी के साथ जब बात करते हैं बुलेरो जैकेट की, तो ये छोटी क्रॉप जैकेट्स हैं जो आपको बहुत ही ट्रेंडी दिखाती हैं। आपको जो भी स्टाइलिश पहन लो और उसके ऊपर बुलेरो जैकेट डाल लो, मतलब ये आपके शोल्डर्स पर रहती हैं।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पास

0: आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को कि भाई जो ये भारी भरकम ज्वेलरी जो पहले पहनी जाती थी सिर्फ शादी या रिसेप्शन में, अब वो किसी बड़े ओकेजन के लिए बचाकर रखने का आइडिया ना थोड़ा चेंज हो गया है। सुन रहे हैं आप रेडियो वाले 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। सो वोग इंडिया ने भी एक स्टाइलिंग हाई ज्वेलरी को एवरीडे क्लोदिंग के साथ पहनने का ट्रेंड जो है वो हाईलाइट किया है। और ऑनेस्टली एक सिंपल व्हाइट शर्ट पहन के, स्ट्रेट ट्राउजर्स पहन के और एक ब्यूटीफुल स्टेटमेंट नेकलेस के साथ बस पूरा लुक चेंज हो जाता है। क्योंकि ज्वेलरी का काम ना हमेशा आउटफिट को हैवी बनाना नहीं होता, कभी कभी वो आउटफिट को पर्सनैलिटी दे देती है। और इंडियन वुमेन के लिए तो ये आइडिया और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास ज्वेलरी की इतनी रिच ट्रेडिशन है, कुंदन, पोलकी, सिल्वर, मीनाकारी, ना जाने क्या क्या है हमारे पास, लेकिन हम अक्सर उन्हें ना स्पेशल ओकेजन्स के लिए बॉक्स में बंद करके रखते हैं। सो शायद फैशन का नया आइडिया यही है कि स्पेशल चीज़ों को सिर्फ स्पेशल दिन के लिए मत बचाइए। आपकी फेवरेट ज्वेलरी कौन सी है ये डिसाइड कीजिए और फिर उसे पहन लीजिए। सो आप मुझे बताइए क्या आप उसे रोज़ पहन सकती है बिना किसी ओकेजन के, मतलब सिर्फ कपड़ों को हाईलाइट करने के लिए या फिर फैशन में है इसीलिए कोई भी बढ़िया से बड़े बड़े ईयरिंग्स पहनना आपको पसंद है रेगुलर बेसिस पे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।
1: Radio

0: Saha, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: Radio Olive Bay. Radio Olive Bay. Story of the day.
2: Story of the day.
3: छोटी सी कक्षा में दीवारों पर अक्षर लिखे हैं वो अक्षर जो अपने साथ कहानियां लेकर आते हैं हमारे देश के गीत और वो बोली जो लाखों को जोड़ती है कभी एक शिक्षक ने एक छोटे से शब्द से संस्कृति समझाई और आज भी एक बच्चा अपनी पहली कविता हिंदी में पढ़ता है अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ हिंदी दिवस 14 सितंबर हमें याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं यह हमारी पहचान है हमारी संस्कृति है और एक पुल है जो पीढ़ियों को जोड़ता है
2: Story of the day.
0: Fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
4: Hi, this is Kailash Kher, and you are listening to Qatar's first Hindi radio station, Radio Olive.

लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है इन एसोसिएशन विद

एक वायरल ना वीडियो ने मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सोचने पर मजबूर किया। उसमें कोई लग्जरी कार नहीं है, कोई डिजाइनर आउटफिट नहीं है, कोई एक्सपेंसिव लोकेशन नहीं है, बस एक लड़की जो बहुत एफर्टलेसली पेड़ पर चढ़ रही है और इंटरनेट उसे देखकर जेन्युइनली इंप्रेस्ड है। अब सोचिए, इंटरनेट पर रोज करोड़ों परफेक्टली एडिटेड वीडियोज आते हैं, फिर एक सिंपल स्किल इतनी अटेंशन क्यों लेती है। यू आर लिसनिंग रेडियो 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है, क्योंकि शायद हम पॉलिश्ड कंटेंट से थोड़ा थक चुके हैं भाई। इतनी एडिटिंग, इतने अच्छे दिखते हैं इंस्टाग्राम पर सारे कपड़े सारे लोग, कभी कभी तो मुझे लगता है कि रियल लाइफ में तो ऐसा मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकती। हर चीज़ परफेक्ट लाइटिंग में, परफेक्ट फेस, परफेक्ट बैकग्राउंड, परफेक्ट कैप्शन, और फिर अचानक कोई ऐसे बड़े अच्छा

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM बिंदास रेडियो ऑलिव पे स्टोरी ऑफ द डे
1: छोटी सी कक्षा में दीवारों पर अक्षर लिखे हैं वो अक्षर जो अपने साथ कहानियां लेकर आते हैं हमारे देश के गीत और वो बोली जो लाखों को जोड़ती है कभी एक शिक्षक ने छोटे से शब्द से संस्कृति समझाई

0: में पड़ता है अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ। हिंदी दिवस 14 सितंबर हमें याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं, यह हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और एक पुल है जो पीढ़ियों को जोड़ता है।
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस.

भाई हैवान मूवी की बात करते हैं, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की मूवी है, बॉक्स ऑफिस पर इस टाइम पर बढ़िया चल रही है, अच्छा कलेक्शन भी आ रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इस वीकेंड की, तो यहाँ पर मैंने देखा कि वीकेंड में इस मूवी को ज़्यादा किसी ने तवज्जो दी नहीं, स्पेशली इन कतर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स लाइफ मस्त है। लेकिन मुझे ये बॉक्स ऑफिस नंबर से ज़्यादा ना एक बड़ा सवाल इंटरेस्टिंग लगता है, क्या आज सुपरस्टार होना अकेले फिल्म को बेच सकता है? आई डोंट थिंक सो यार, कितना भी बड़ा स्टार हो मूवी अच्छी नहीं है तो नहीं चलेगी। एक टाइम था जब पोस्टर पर अमिताभ बच्चन का नाम ही काफी था, फिर शाहरुख खान, सलमान खान, लेकिन आज ना ऑडियंस के पास ऑप्शंस हैं, थिएटर है, नेटफ्लिक्स है, प्राइम है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम के रिव्यूज हैं, और सबसे डेंजरस चीज दोस्त का व्हाट्सएप पर रिव्यू है। सो अब ऑडियंस ना शायद ये पूछती है कि एक्टर कौन है, ये मुझे नहीं लगता कौन पूछता है। अब इसी के साथ साथ लोग पूछते हैं कि स्टोरी क्या है, और यही सिनेमा के लिए हेल्दी कॉम्पिटिशन भी है, क्योंकि स्टार आपको थिएटर तक ला सकता है लेकिन कहानी आपको आखिरी सीन तक बिठा कर रख सकती है। एंड मैंने बहुत मतलब इसे रिसेंटली मूवीज देखी हैं जो बड़े बड़े स्टार्स की मूवी है लेकिन चलती नहीं है क्योंकि उनकी कहानियाँ अच्छी नहीं है। फिल्म हमेशा आपका ऐसा चीज़ होनी चाहिए जो आपको 3 घंटे कुछ सोचने पर मजबूर करे, कुछ अच्छा दिखाए, कुछ नया दिखाए, चाहे वो स्टार कास्ट हो, ट्रेलर हो, रिव्यू हो या कहानी। फिल्म चुनते टाइम आपका पहला फिल्टर क्या होता है बताइए मुझे 3311063 पर। You are listening Radio Olive. Stay tuned, Jio Bindas.

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद

मेरे जाने का टाइम हो गया है एंड दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू से कि यार अब कल मिलेंगे. लेकिन इसी के साथ जाते जाते एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट, अभी अपना फ़ोन खोलिए, गैलरी में जाइए और बस पिछले एक महीने की फ़ोटोज़ देखिए. आपको कितनी ऐसी फ़ोटोज़ मिलेंगी जिनका आपके मतलब आपसे कोई रिलेशन ही नहीं होगा, रीज़न याद ही नहीं होगा. किसी कॉफ़ी की फ़ोटो, कोई आसमान की, किसी खाने की, किसी दुकान की, किसी आउटफिट की, किसी चीज़ का स्क्रीन शॉट. और फिर सवाल आता है कि हम कितनी सारी चीज़ें सेव करते हैं, क्योंकि ना इंसान नेचुरली मेमोरी को प्रिजर्व करना चाहता है. फोटोग्राफी हमें ये एबिलिटी तो दे देती है, हम मोमेंट्स को फ्रीज कर सकते हैं. लेकिन सोशल मीडिया ने इसमें एक नया लेयर जोड़ दिया है. अब हम सिर्फ मेमोरीज नहीं जोड़ रहे हैं, अब उन्हें डिस्प्ले भी कर रहे हैं. और शायद इसी वजह से कभी कभी हम मोमेंट्स के अंदर कम और कैमरा के पीछे ज़्यादा होते हैं. कॉन्सर्ट में सिंगर को देखने की बजाय फ़ोन स्क्रीन देखना, सनसेट को महसूस करने की बजाय स्टोरी बनाना, डिनर में कॉन्वर्सेशन से ज़्यादा हम एंगल ढूंढने लग जाते हैं. दो ही गलत नहीं है, लेकिन बैलेंस वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी का मतलब बहुत ऐसे खूबसूरत मोमेंट्स हैं जो कॉन्टेंट नहीं होते. सो कोई फ़ोटो, कोई स्टोरी, कोई कैप्शन, कोई मेमोरी. सो आज सबसे सिंपल सवाल ये है कि आपके फ़ोन में सबसे ज़्यादा क्या है, फोटोज़, वीडियोज़ या स्क्रीनशॉट्स? मैं अगर अपनी बात करूँ तो आई हैव लॉट ऑफ स्क्रीनशॉट्स इन माई फ़ोन और मुझे समझ में नहीं आती कि ये स्क्रीनशॉट लिए क्यों गए थे. सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव फॉर नाउ. आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM सुपरहिट गानों के साथ. कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह पर. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास. रेडियो

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
1: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स, दिस इज रणवीर सिंह, स्टे ट्यून्ड।

0: Olive. 106.3 FM.
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power: Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers CR Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan, ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
0: Olive Music Marathon, one hour, non-stop, back to back, gaane.
2: साडी गली आजा कहने से लेकर
3: साडी गली आजा सानू
2: नैना का कसूर ढूंढने तक
3: नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर
2: गिटार की धुन पर जिसने हर कहानी को गीत बनाया और हर आम इंसान की जिंदगी को बॉलीवुड के पर्दे पर खास दिखाया आज उसी मल्टी टैलेंटेड स्टार आयुष्मान खुराना को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद

आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, स्वैग के साथ स्वागत है। यह है रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज का सिलसिला, जहां पे एक साथ बैठकर गाने सुनेंगे, सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बताएंगे। तो आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, 3311063 पर मैसेज कीजिए, मुझे बताइए क्या हाल है। और यहाँ पे ऑलिव रिचार्ज को किक स्टार्ट करते हुए कहते हैं जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindaas Radio Olive pe Radio Olive pe Story of the day
1: Story of the day
2: छोटी सी कक्षा में दीवारों पर अक्षर लिखे हैं वो अक्षर जो अपने साथ कहानियां लेकर आते हैं हमारे देश के गीत और वो बोली जो लाखों को जोड़ती है कभी एक शिक्षक ने एक छोटे से शब्द से संस्कृति समझाई और आज भी एक बच्चा अपनी पहली कविता हिंदी में पढ़ता है अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ हिंदी दिवस 14 सितंबर हमें याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं यह हमारी पहचान है हमारी संस्कृति है और एक पुल है जो पीढ़ियों को जोड़ता है
1: Story of the day.
3: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Deepika Padukone.
4: Radio Olive 106.3.
6: I'm in number one. Radio Olive.
7: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
8: This hour is brought to you by
9: Malabar Gold and Diamonds ka brand new showroom ab Safari Mall Abu Hamur mein. Ab aap apni purani gold jewelry chahe wo kahin se bhi purchase ki gayi ho bina kisi loss ke exchange kar sakte hain. Sirf Malabar Gold and Diamonds Safari Mall mein.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि हम सब जानते हैं कि आज आयुष्मान का बर्थडे है, मगर आयुष्मान खुराना के बारे में एक बहुत स्पेशल चीज है। हम ये जानते हैं कि वो रोडीज के सीजन 2 में आए थे, मगर रोडीज के सबसे पहले विनर जो है वो आयुष्मान ही है, क्योंकि रोडीज के सीजन 1 में एक्चुअली कोई विनर एज सच डिसाइड नहीं हुआ था, उन्हें बस वो कैंपेन कंप्लीट करना था। मगर विनर फॉर्मेट जो है सेकंड सीजन से शुरू हुआ और उसके विनर बने आयुष्मान। सो टेक्निकली रोडीज के सबसे पहले विनर जो है वो आयुष्मान है, और यही बात बताते हुए उनको बर्थडे विश करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक स्टेटमेंट मेरे मन में बहुत दिनों से गूंज रहा है, वो है कि सब मोह माया है। तो रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, और उस पॉडकास्ट में जो है काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड एक बिलियनेयर बंदा जो है वो बैठा हुआ था। उससे पूछा कि और बताओ लाइफ में कैसा चल रहा है ये सब। उससे तो वही स्मॉल टॉक के बाद जब काम की बात आई तो उनसे पूछा कि आप इतना पैसा कमा चुके हैं, अभी आपको क्या लगता है। तो उस बंदे ने जवाब दिया कि यार मैं इतना पैसा कमा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मगर कभी कभी ना मुझे लगता है कि क्या है इन सब का मीनिंग, क्यों है ये सब, क्यों ये सारी चीज़ें हैं जो लोग इसके पीछे इतने पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। मुझे मिल गई, मैंने बहुत मेहनत की, मगर अब क्या। तो वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है ना अलग लेवल पे हिट करता है। अब देखिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हम सब जाते हैं, पैसे होते हैं तो अलग होता है, पैसे नहीं होते तो अलग होता है, मगर कहीं ना कहीं हम सब इस चीज़ के थ्रू जाते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे पैसे कमाने के बाद ना शायद इंसान यही सोचता है यार अब क्या, कहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं, जो खरीदना है खरीद सकते हैं, मगर अब क्या। कुछ लोग एंजॉय करते हैं, कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं। तो बेसिकली परस्यूट तो ये रहता ही है, मुझे लगता है जब से इंसान है तब से मटेरियल पोसेशन का परस्यूट तो रहता है और रहेगा भी। और पर कभी कभी एक बैलेंस बिठाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा अलाइव फील करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही बात याद दिलाते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: साडी गली आजा कहने से लेकर
2: साडी गली आजा सानू
1: नैना का कसूर ढूंढने तक,
2: नैना दा क्या कसूर बे कसूर बे कसूर,
1: गिटार की धुन पर जिसने हर कहानी को गीत बनाया और हर आम इंसान की जिंदगी को बॉलीवुड के पर्दे पर खास दिखाया, आज उसी मल्टी टैलेंटेड स्टार आयुष्मान खुराना को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर एक सवाल मेरे मन में गूंज रहा है, वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। सवाल का जवाब आप जरूर दें मुझे। सवाल यह है कि लैपटॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? मैसेज कीजिए मुझे, लैपटॉप को हिंदी में क्या बोलते हैं? तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 3311063 पर, यानी कि 3311063। जल्दी जल्दी मैसेज कीजिए और बताइए सवाल का जवाब। और यही बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year।

गलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: छोटी सी कक्षा में दीवारों पर अक्षर लिखे हैं, वो अक्षर जो अपने साथ कहानियां लेकर आते हैं, हमारे देश के गीत और वो बोली जो लाखों को जोड़ती है। कभी एक शिक्षक ने एक छोटे से शब्द से संस्कृति समझाई और आज भी एक बच्चा अपनी पहली कविता हिंदी में पढ़ता है, अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ। हिंदी दिवस 14 सितंबर हमें याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं, यह हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और एक पुल है जो पीढ़ियों को जोड़ता है।
1: On the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alcor.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्रांड न्यू शोरूम अब सफारी मॉल अबू हमूर में. अब आप अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी चाहे वो कहीं से भी परचेज की गई हो बिना किसी लॉस के एक्सचेंज कर सकते हैं सिर्फ मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स सफारी मॉल में.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हिंदी दिवस के इस अवसर पर एक बहुत ही प्यारी कविता का छोटा सा पोर्शन जो है मैं आपके सामने जो है रीड करना चाहूंगा। और ये कविता बहुत स्पेशल है। इस कविता का नाम है आत्म परिचय। इसे लिखा है हरिवंश राय बच्चन साहब ने। तो चलिए इसका एक छोटा सा पोर्शन हम पढ़ते हैं, मगर मैं एक दरख्वास्त भी आपसे करना चाहूंगा, वो ये है कि वक्त मिले तो आप इस कविता को पूरा पढ़ना। ये बहुत प्यारी कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं कभी ना जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। तो जैसे मैंने बोला, छोटा सा एक पोर्शन है, आप इसे पूरा पढ़िएगा। ये बहुत ही प्यारी कविता है हरिवंश राय बच्चन साहब की लिखी हुई। तो यही बात आज बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं कुछ कहानियां आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जो मुंशी प्रेमचंद की लिखी गई हैं। हिंदी में और भी बहुत बढ़िया बढ़िया राइटर्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया लेखक रहे हैं, मगर प्रेमचंद जी के लिए खास जगह है मेरे दिल में, इसलिए उनके कुछ वर्क्स जो है मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा जो आप कभी ना कभी वक्त निकाल के ज़रूर पढ़िएगा। सबसे पहला है बड़े भाई साहब। ये छोटे भाई और बड़े भाई के बीच में जो रिलेशनशिप रहता है, उसके जो डायनामिक्स हैं, उसके बारे में है। और एक कहानी है पंच परमेश्वर। ये बेसिकली न्याय और कर्तव्य के बीच निष्पक्षता के संदेश को देने वाला एक बहुत ही अच्छा एक लिटरेरी वर्क है। और ऐसे बहुत सारी कहानी है। एक है शतरंज के खिलाड़ी, ये बहुत ही फेमस कहानी में से एक है। तो ये तीन वर्क्स जो है मैंने आपको बताए हैं, रिकमेंड किए हैं। ऐसे और भी हैं, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: आजा साड़ी गली आजा कहने से लेकर
2: साड़ी गली आजा सानू
1: नैना का कसूर ढूंढने तक,
2: नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर।
1: गिटार की धुन पर जिसने हर कहानी को गीत बनाया और हर आम इंसान की जिंदगी को बॉलीवुड के पर्दे पर खास दिखाया, आज उसी मल्टी टैलेंटेड स्टार आयुष्मान खुराना को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: Olive, 106.3 FM, Gio Bendaz.
1: देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 to 3 minutes का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Only laga aur ho ja recharge. Olive recharge.
0: Olive recharge. Radio Olive 106.3 FM par. Jio Bindas.
2: Olive recharge.
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds ka brand new showroom ab Safari Mall Abu Hamur mein. Ab aap apni purani gold jewelry chahe wo kahin se bhi purchase ki gayi ho bina kisi loss ke exchange kar sakte hain. Sirf Malabar Gold and Diamonds Safari Mall mein.

सभी का फिर से एक और बार इस्तकबाल है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल ओवर 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जरा सोचिए, देखिए, एक वर्किंग डे के दिन आप मस्ती कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, फन कर रहे हैं, हंस रहे हैं, और वो भी अपने ऑफिस में। कभी सोच सकते हैं इस बारे में? देखिए, सोच सकते हैं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ हैप्पीनेस लॉन्च के बारे में, जहाँ पे रेडियो ऑलिव की टीम आपके ऑफिस में विजिट करेगी, आपके साथ चिल करेगी, फन करेगी, आपको रीचार्ज और रीएनर्जाइज करेगी। इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको मैसेज करना है 3311063 पर HL स्पेस आपके कंपनी का नाम। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, बेसिकली अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं या फिर बहुत ऐसे लो फील कर रहे हैं तो एक चीज आप ट्राई कर सकते हैं, मुझे बहुत पसंद आई ये चीज। तो बेसिकली मेरी एक जूनियर ने मुझे सिखाया था, मंडला आर्ट बोलते हैं इसे, ठीक है। ये थोड़ा एक थेरेप्यूटिक इसका एक इफेक्ट रहता है, काफी फोकस इसमें लग जाता है, जाने अनजाने में हम इसमें से इन्वॉल्व भी हो जाते हैं। तो मंडला आर्ट अगर आप थोड़ा वक्त निकाल के कर सकते हैं तो बहुत आपको हेल्प मिलेगी, आपका फोकस इंप्रूव होगा और ऑब्वियसली आप डिजिटल चीज़ों से थोड़ा दूर रहेंगे और हाथ से काम करोगे, तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत बेहतर रहेगी आपके लिए। सबसे खास बात ये है कि बहुत ही सोदिंग सा, सेरीन सा एक्सपीरियंस है ये, आपको काफ़ी काम महसूस होगा इसके बाद। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: छोटी सी कक्षा में दीवारों पर अक्षर लिखे हैं, वो अक्षर जो अपने साथ कहानियां लेकर आते हैं, हमारे देश के गीत और वो बोली जो लाखों को जोड़ती है। कभी एक शिक्षक ने एक छोटे से शब्द से संस्कृति समझाई और आज भी एक बच्चा अपनी पहली कविता हिंदी में पढ़ता है, अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ। हिंदी दिवस 14 सितंबर हमें याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं, यह हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और एक पुल है जो पीढ़ियों को जोड़ता है।
1: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
0: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 to 3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd सितंबर तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
2: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you're listening to Qatar's top most Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Geo Bindas.

0: brought to you by
1: Malabar Golden Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में. अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं. सिर्फ Malabar Golden Diamonds Safari Mall में.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। देखिए, हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी लाइफ में जो है एक इंस्पिरेशन की तलाश में रहते हैं, ठीक है, कि भाई किसी इंसान ने कुछ बड़ा कर दिया होगा, उसके बारे में पढ़ के जरा हम भी इंस्पायर हो जाए करके। मगर मैं कहता हूं कभी कभी यार थोड़ा अपने ऊपर सोचा करो ना, अपने कहानी के बारे में सोचा करो। सोचो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे आप बाहर आए, तो अपने आप को भी एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनाना कोई बुरी बात नहीं है। हम भी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स से हम ओवरकम करके जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम भी कितने ग्रो हुए हैं करके। तो कभी कभी किसी और को अपना इंस्पिरेशन बनाने से पहले सोचो कि यार मैंने भी लाइफ में कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन फेस किए हैं, तो मैं ही खुद का इंस्पिरेशन बन सकता हूँ। बिल्कुल बन सकते हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the Hour।

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल इन 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हम याद दिलाना चाहेंगे आपको कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर radioolive.qa सर्च कीजिए। वहां पे अगर फॉलो बटन दिख रहा है तो फॉलो कीजिए, और फॉलोइंग दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। और आप हमारे कॉन्टेंट को चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, हमें सुनते हुए स्टोरी बनाकर डालिए इंस्टाग्राम पर, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कई सारे बढ़िया बढ़िया डिजिटल कॉन्टेस्ट जो है हमारे पेज पर आते हैं, आप उसके साथ भी इंटरेक्ट कीजिए, आपको जीतने के मौके मिलेंगे, वो भी बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: आजा साडी गली आजा कहने से लेकर
2: साडी गली आजा सानू
1: नैना का कसूर ढूंढने तक,
2: नैना दा क्या कसूर, बे कसूर, बे कसूर।
1: गिटार की धुन पर जिसने हर कहानी को गीत बनाया और हर आम इंसान की जिंदगी को बॉलीवुड के पर्दे पर खास दिखाया, आज उसी मल्टी टैलेंटेड स्टार आयुष्मान खुराना को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: Olive 106.3 FM Geo Bindas.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ऑरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ऑरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें
1: एक्सपीरियंस मोर विद ऑरिडू
3: ऑन लगा और हो जा रिचार्ज
0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
3: ऑलिव रिचार्ज
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds का brand new showroom अब Safari Mall Abu Hamur में अब आप अपनी पुरानी gold jewelry चाहे वो कहीं से भी purchase की गई हो बिना किसी loss के exchange कर सकते हैं सिर्फ Malabar Gold and Diamonds Safari

टाटा बाबा गुड बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं और 3 घंटे खत्म हो चुके हैं। मगर जाने से पहले यही दरख्वास्त है आपसे कि अब अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना और हमें जरा दुआओं में याद रखना। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

मुझे नहीं पता था कि जिस कलर के कपड़े आप पहनते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी पे झलकने लग जाता है उस दिन। मतलब अगर आज मैं ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर आई हूँ तो सबको मैं ग्रीन फ्लैग एनर्जी दे रही हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा जिस दिन मैं रेड कपड़े पहनती हूँ उस दिन क्या मैं रेड फ्लैग बन जाती हूँ। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ही ग्रीन फ्लैग वाली है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसू संशू, आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, ग्रीन फ्लैग हो या रेड फ्लैग हो, ये जो है दोनों ही खतरनाक हो जाते हैं। ज़्यादा ग्रीन भी जो है अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा रेड ऑफकोर्स अच्छा ही नहीं होता। So, आपके लाइफ के सारे रेड फ्लैग्स को ग्रीन फ्लैग्स में कन्वर्ट करने के लिए, आपको एंटरटेन करने के लिए आज मैं आ गई हूँ बहुत सारा अमेजिंग वाला कंटेंट लेकर। बॉलीवुड पे बातें करेंगे हम लोकल अपडेट्स पे बात करने वाले हैं, हम कुछ गॉसिप्स पे बात करेंगे, आपके ओपिनियंस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम इंजॉय करने वाले हैं। सो अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ इंजॉय करते जाओ और कहते जाओ जियो बिंदास।

0: पर अक्षर लिखे हैं, वो अक्षर जो अपने साथ कहानियां लेकर आते हैं, हमारे देश के गीत और वो बोली जो लाखों को जोड़ती है। कभी एक शिक्षक ने एक छोटे से शब्द से संस्कृति समझाई और आज भी एक बच्चा अपनी पहली कविता हिंदी में पढ़ता है, अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ। हिंदी दिवस 14 सितंबर हमें याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं, यह हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और एक पुल है जो पीढ़ियों को जोड़ता है।
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers CR Salim and Rajesh Krishna. Al Rayyan ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
0: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
2: मैं हूँ आदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3.
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
6: लुलु, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: यार इस गाने की ट्यून काफी मैच कर दिया ना, आंखों से तूने ये क्या कह दिया। थोड़ी देर पहले हमने इसका रिक्रिएटेड वर्जन जो है वो एंजॉय किया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं आपको ये सिमिलर लगा या नहीं लगा। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए यार, मौसम की बात कर रहे थे हम, और आज मैं और तनीषा जैसे ही हमारी बिल्डिंग के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर गए थे ना, तो हमने ये देखा कि यार थोड़ा सा तो फर्क आया है ह्यूमिडिटी में, वरना मैं जैसे ही अपनी बिल्डिंग से बाहर जाती थी मेरे चश्मे पे एक धुंध जम जाती थी, मुझे सब कुछ धुंधला दिखने लग जाता था। लेकिन आज सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ नहीं हुआ, एटलीस्ट दोपहर में तो नहीं हुआ। सो कंपैरेटिवली थोड़ा सा मौसम जो है वो बढ़िया होता जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कह रहे हैं। अब रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं उस पर बात करेंगे हम थोड़ी सी देर में, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको टेम्परेचर बता देना चाहिए हर रोज़ की तरह। दोहा में इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 36 डिग्री सेल्सियस, एंड आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 39 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, और आज का लोएस्ट टेम्परेचर सरप्राइजिंगली 29 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। अब से कुछ ही देर में जो है सनसेट होने वाला है, तो यू नो द ड्रिल, आपको क्या करना है, आपको बस अपना कैमरा उठाना है यानी फ़ोन उठाना है, एंड अगर आप कहीं खड़े हुए हैं, आप पार्किंग में अपनी कार जो है वो पार्क कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, या आपके घर पे एक बहुत बड़ी खिड़की है, सो वहाँ से आसमान की प्यारी प्यारी फ़ोटोज़, एस्थेटिक वाली फ़ोटोज़ जो है वो आपको बस मुझे भेजनी है, ताकि मैं भी इस बिना खिड़की वाले स्टूडियो के बाहर का नज़ारा देख सकूँ, इंजॉय कर सकूँ। यार आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, मुझे भी जो है ऐसे सुर्ख लाल आसमान, ब्लू आसमान देखने का काफ़ी मन होता है ना। 3311063 नंबर, जल्दी से फ़ोन उठाओ एंड मुझे एक प्यारी सी फ़ोटो जो है वो भेज दो। तब तक जो है आप ज़बरदस्त हिट गाना जो है वो बैकग्राउंड में इंजॉय कर सकते हैं। गाने का नाम है पल्लू लटके शादी में जरूर आना से ये गाना है, सो जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ एंजॉय करो और कहते रहो जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ऑरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ऑरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
1: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
0: सेप्टेम्बर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
1: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट आज ही बुक करें। धरोहर मिस मत करना।
3: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
4: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: रुकी रुकी गाने का नाम है, लेकिन देखिए हम रुकने पर बिलीव नहीं करते हैं, हम चलते रहने पर बिलीव करते हैं, और बस इसीलिए आपके लिए एक अमेजिंग वाला शो जो है वो लेकर आ चुके हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कंसुशन, शो आपके लिए लेकर आ चुके हैं हम जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए, थोड़ी देर पहले आपसे इल्तिजा की थी मैंने कि यार बताइए जरा कि बाहर का मौसम कैसा हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है बाहर। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मोहम्मद यासीफ जी ने जो है हमें बहुत ही खूबसूरत ही फोटोज़ भेजी है। उसके बाद विक्रांत जी का भी मैसेज आया है, विक्रांत ने भी बहुत खूबसूरत फोटोज़ भेजी हैं सनसेट की। एंड सैयद खादिम हुसैन जी ने भी बहुत ही प्यारी फोटोज़ भेजी हैं। एंड तुलसी जी ने भी बहुत ही प्यारी, यार आप लोगों की फोटोग्राफी स्किल्स तो दिन ब दिन बहुत ही बेहतर होती जा रही है। एंड निमृति ने भी बहुत ही प्यारी फोटोज़ भेजी है। एंड सब ने देखो बहुत ही खूबसूरत फोटोज़ भेजी। अब इनमें से मैं कैसे चूज़ करूँ कि यार वॉलपेपर पे कौन सी जो है फ़ोटो लगेगी। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक अमेजिंग वाला गाना जो है वो इन्जॉय करना चाहिए। एंड मैं जब तक देख कर आती हूँ कि और कौन कौन है जिसने मुझे फ़ोटो भेजी है, एंड किसकी सबसे अमेजिंग वाली फ़ोटो मुझे लगने वाली है। वैसे आज किसी बहुत ही स्पेशल इंसान का हैप्पी वाला बर्थडे भी है, आयुष्मान खुराना जी का। सो उनका एक अमेजिंग वाला गाना आप इन्जॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास। साडी गली आजा कहने से लेकर
1: साडी गली आजा सानू
0: नैना का कसूर ढूंढने तक,
1: नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर,
0: गिटार की धुन पर जिसने हर कहानी को गीत बनाया और हर आम इंसान की जिंदगी को बॉलीवुड के पर्दे पर खास दिखाया, आज उसी मल्टी टैलेंटेड स्टार आयुष्मान खुराना को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Kai ke saath CNG ho ya fuel type buses 64 seater ya compact 26 seater paiye behtar mileage aur maximum comfort Carmel Group ke saath ab safar without suffer visit Carmel Group now.
1: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2 से 3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। द कतर टॉक्स 2026. Communicate, connect and conquer.
2: बातें नहीं, energy का booster मिल रहा है. क्योंकि चल रहा है जबरदस्त evening. सिर्फ Radio Olive पर. Jio Bindas.
3: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: लंबरगिनी वाला गाना जो है आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं जबरदस्त इवनिंग, जहां पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखिए यार, सबसे बढ़िया जॉनर जो है मुझे बॉलीवुड का वही लगता है जब किसी एक चीज पे बात हो रही होती है। यार लंबरगिनी पे बात कर ली हमने काले चश्मे पे बात कर ली, मतलब जब इंसानों की खूबसूरती से लिरिसिस्ट आगे बढ़कर, मतलब पेड़ पौधे पहाड़ इनसे आगे बढ़कर, इंसानों से आगे बढ़कर जब चीजों की खूबसूरती पे बात करते हैं ना, तो अलग लेवल पार कर जाते। एंड देखिए हम जो है अभी स्टिक रहेंगे सिर्फ हमारी आसमान की खूबसूरती पर, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वाली फ़ोटोज़ जो है वो मुझे भेजी है। अभी अभी विनायक का जो है मैसेज आया है, विनायक ने एक बहुत खूबसूरत जो है वो फ़ोटो भेजी है। एंड असमा जी द क्यूटेस्ट, उन्होंने जो है एक प्यारा सा GIF मुझे भेजा है जिसमें वो इंजॉय कर रही हैं, हंस रही हैं, एंड उसके नीचे लिखा है कि माई रिएक्शन टू योर शो। बस यार देखो, आपकी हंसी आपकी मुस्कान यही तो मोटिवेशन है, और तो क्या चाहिए फिर जीने के लिए, पानी और ऑक्सीजन वो तो मिल ही जाता है। सो बस आपकी ऐसे ही अमेजिंग मैसेजेस का इंतजार कर रही हूं मैं 3311063 पर आकर जल्दी से मुझे मैसेज कर दो। थोड़ी सी देर में हम शुरू करने वाले चुटकी भर सॉन्ग वाला कॉन्टेस्ट, यानी आपको हम सुनाएंगे चुटकी भर सा गाना, यानी थोड़ा सा गाना, एंड आपको जो है हमें ये बताना पड़ेगा कि ये जो गाना है ये आखिर कौन सी मूवी का है और इस गाने का नाम क्या है। कल सबको जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था मैंने। सो जल्दी से फोन उठाइए 3311063 या अपने व्हाट्सएप पर लिख के रखिए, मैं जो है इस गाने के उस पार आती हूँ और आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछती हूँ। फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए वॉल्यूम बढ़ाकर आपकी कशिश के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Here we go.

0: जब मिल सकता है और भी ज्यादा, तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
1: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर,
0: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से।
1: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिले।
0: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
2: रेडी टू लर्न, टू प्ले, टू ग्रो।
1: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ।
2: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स।
1: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए।

ओके ओके, मैं सॉन्ग का नाम भूल गई हूँ, लेकिन कल हमने ये वाला गाना अपने शो में एंजॉय किया था एंड उसके बाद उसने परचम कैटरीना का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस अगर मुझे किसी गाने में लगता है तो वो जो है इस गाने में है। मतलब अमेजिंग स्वैग वाला गाना है, अगर किसी को अपना मेन कैरेक्टर फील जो है उसमें रहना है तो ये गाना जो है आप इंजॉय कर सकते हो एंड ये गाना आप बैकग्राउंड में चला के छोड़ सकते हो अगर आप मेन कैरेक्टर एनर्जी में रहना चाहते हो तो। बाकी एक और गाना जो है चुटकी भर सॉन्ग में आज मैं आपसे पूछने वाली हूँ कि ये गाना कौन सा है एंड ये मूवी कौन सी है, वो भी एकदम यू नो मेन कैरेक्टर वाइब वाला गाना है एंड आज ये जो गाना है ये मैं चुनकर नहीं लाई हूँ, मेरी मम्मी चुनकर लाई है। यस, मॉम से वीडियो कॉल करते हुए जब मैं तैयारी कर रही थी अपने शो की तो मैंने उनसे पूछा कि मॉम आज आपका फेवरेट गाना बताओ एंड मॉम ने इस गाने का नाम लिया, तो बस आपके लिए ये गाना आ चुका है। तो ज़रा कान लगाकर और ध्यान लगाकर ये गाना सुनो, लिरिक सुनो और ध्यान से सुनकर मुझे बताओ कि आखिर ये जो गाना है ये कौन सा गाना है एंड कौन सी मूवी का गाना है।

की कशिश और चुटकी भर सॉन्ग में यही है आज का सॉन्ग। आपको मुझे बताना है कि ये जो गाना अभी आपने सुना है कौन सी मूवी का है, इस गाने का नाम क्या है। मेरी मम्मी जो है 10th स्टैंडर्ड में थी जब ये मूवी रिलीज हुई थी एंड ये उनका बहुत ज़्यादा पसंदीदा सॉन्ग है। सो बस मम्मी का पसंदीदा सॉन्ग है तो आज कॉन्टेस्ट में हमने यही सॉन्ग जो है वो रखा है। 3311063 इज द नंबर, इस पर आपको मैसेज करके ऑडियो नोट ड्रॉप करके आप मुझे आंसर दे सकते हैं और बता सकते हैं कि यार कशिश ये वाला जो सॉन्ग है ये है। अब देखो आई नो आज आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि मम्मी की पसंद इतनी कॉमन नहीं है। सो अगर एक और बार सुनना है तो फिर मैं सुना देती हूँ, जरा ध्यान लगाकर सुनिए, ट्यून समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आ जाएगा ये गाना कौन सा है।

आ गया होगा अब तक तो समझ 3311063 पर इस अमेजिंगली रोमांटिक गाने को पहचान कर मुझे आप आंसर दीजिए. एंड बाकी रोमांटिक गानों की बात हुई है तो आज का रोमांटिक गाना जो है यानी आज के टाइम का रोमांटिक जो गाना है उसे जो है हम इंजॉय करते हैं. गाने का नाम है बरसात, बंजारे डुओ का ये गाना है. एंड अभी अभी आपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के प्रमोशंस में ये गाना काफ़ी सुना होगा. सो ये गाना वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और आंसर्स आपको देने 3311063 पर. Stay tuned, Jio Bindas.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास टाइम चेक ब्रॉट टू यू बाय नानातल बहार द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर सुख वाकिफ अलखोर।
2: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 6:11 दैट इज 6:11 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
0: रेडियो ओलिव पे रेडियो ओलिव पे स्टोरी ऑफ द डे
3: स्टोरी ऑफ द डे स्टोरी ऑफ द डे।
4: एक छोटी सी कक्षा में दीवारों पर अक्षर लिखे हैं, वो अक्षर जो अपने साथ कहानियां लेकर आते हैं, हमारे देश के गीत और वो बोली जो लाखों को जोड़ती है। कभी एक शिक्षक ने एक छोटे से शब्द से संस्कृति समझाई और आज भी एक बच्चा अपनी पहली कविता हिंदी में पढ़ता है अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ। हिंदी दिवस 14 सितंबर हमें याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं, यह हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और एक पुल है जो पीढ़ियों को जोड़ता है।
5: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
6: रेडी टू लर्न टू प्ले टू ग्रो
7: इस फूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मजराती फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मजराती है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस।
4: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 मिनट का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22 सितंबर तक ऑन www.thequatartalks.com पर। ओपन टू ऑल रेसिडेंट्स ऑफ कतार। ग्रैंड फिनाले इज ऑन 13 नवंबर 2026। The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
8: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक।
9: अरमान मलिक।
10: हमें नंबर वन।
0: 106.3 FM, Radio Olive, Geo Bindas.
11: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian Radio Network.
10: Radio Olive, हमें नंबर वन।
12: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है, क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग। सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
13: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
14: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
15: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

कैसे सोचा होगा लिखने वाले ने, जानी जी ने कैसे सोचा होगा कि यार निकले करंट तेरे यार, तो जो है हम लिख देंगे भाई लिरिक्स में और मजा आ जाएगा लोगों को। मतलब लोग जो है एक वक्त पे लिरिसिस्ट लिखा करते थे कि रोके हंसना, हंसके रोना, यही था तुमसे प्यार, और ऐसा सब लिख रहे हैं, डीप मीनिंग वाली चीज़ें लिख रहे हैं, और यहाँ रैंडमली जो है पंखा ऑन करते हुए करंट लग गया तो अरे निकले करंट तेरे यार। तो जानी जी आपकी हमें कैपेबिलिटीज़ पे कोई शक नहीं है, आपने जो है वो लिखा है कि यार क्या जानी जी ने और कौन से गाने लिखे यार, अरे वो पता नहीं, ये ऐसा ऐसा ऐसा करके कुछ तो गाना एक बहुत अच्छा लिखा है जानी जी ने, लेकिन लेकिन लेकिन आज जो है हम अच्छे लिरिक्स वाले गाने जो है उसकी बात। मैं इतना ग्लिच क्यों कर रही हूँ, क्या इंसान भूख के बाद जो है अजीब सा बिहेव करने लग जाता है? यस, भूख की कमी एंड नींद की कमी बहुत ज़्यादा हो गई है, इस वजह से मैं अजीब सी बातें कर रही हूँ, लेकिन बातों को जो है इग्नोर करते हैं एंड सीधे हमारे कॉन्टेस्ट में जाते हैं। आज की कॉन्टेस्ट का जो गाना है वो बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारी मम्मी ने जो है वो गाना चुना है, उनका फेवरेट वाला गाना है। एक और बार आपको गाना सुनाती हूँ कि आखिर कौन सा वो गाना था जो आपको यू नो पहचानना था चुटकी भर सॉन्ग में।

0: यस, इन्हीं लिरिक्स की बात कर रही थी मैं। देखिए उन्होंने बातों बातों में इख्तियार बोल दिया और हम निकले करंट के पीछे पड़े हुए। वैसे आप सबने जो है गेस बिल्कुल सही सही कर दिया है, लेकिन अभी हम ये नहीं बताएंगे कि आंसर क्या है। सो चुटकी भर सॉन्ग में आज जो है सबने आंसर किया है उनका नाम राज मुकुरधन जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, रीना जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, एंड APG यानी अनायता ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो आप लोगों के पास भी एक और मौका है 3311063 पर ये गाना अगर आपने पहचान लिया है तो जल्दी से मुझे मूवी का नाम और इस गाने का नाम बता दीजिए ताकि आपका नाम भी जो है इस फहरिस्त में, इस लिस्ट में शामिल हो जाए जहां पर आपको हम बॉलीवुड का गानों का OG फैन जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, सो ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए ये अमेजिंग वाला गाना आपकी कशिश के साथ। मैं ज़रा कुछ खा के आती और पानी पी के आती हूँ, वरना मैं ऐसे ही ग्लिच करती रहूंगी और अजीब अजीब चीजें बोलती रहूंगी। सो वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ और कहते रहो जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Biryani belly, bye bye. Flabs instead of abs, not for long. Falcon Fitness is landing in Al Rayyan, September 18th, 7 PM, and bringing the star power, Jay Surya, Esther Anil, Shamna Kasim, producers CR Saleem and Rajesh Krishna. Al Rayyan, ready to get ribbed. Falcon Fitness, spread your wings.
2: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू?
3: अरे रानी का तो पता नहीं, पर लेजेंडरी किशोर कुमार एंड मुकेश के वही एवरग्रीन गाने लाइव दोहा जरूर आ रहे हैं। यस दोहा, गेट रेडी फॉर धरोहर सुरों की अमर कहानी। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियाज फाइनेस्ट ट्रिब्यूट आर्टिस्ट मुख्तर शाह, आलोक कदरे एंड प्रियंका मित्रा आर परफॉर्मिंग लाइव विद ग्रैंड ऑर्केस्ट्रा।
4: सितंबर 24th एट हॉलीडे इन दोहा, रेट्रो वाइब्स, प्योर नॉस्टैल्जिया एंड 1000 मेमोरीज।
3: लॉग ऑन टू क्यू टिकट्स और www.a2zetc.com और अपनी टिकट आज ही बुक करें, धरोहर मिस मत करना।
5: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

यार मुझे क्यों बहुत मजा आता है जब भी मैं अमिताभ बच्चन की ये वाली आवाज सुनती हूँ, उसे एवरीबॉडी शाबाश शाबाश। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा यानी रिस्पांसिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखी है। अब देखिए, थोड़ी देर पहले जो है मैं काफ़ी उल जलूल बातें कर रही थी क्योंकि मुझे जो है प्याज बहुत लगी थी एंड भूख भी लगी थी, तो मैं गई बाहर जो है पानी पिया, ब्लैक कॉफ़ी पी एंड बिस्किट खाकर मैं आ गई हूँ फुल एनर्जी में आपसे बातचीत करने के लिए। अब देखिए, जितने भी बॉलीवुड के ओजी फैंस हैं उन्होंने तो जो आज का हमारा चुटकी भर सॉन्ग वाले कॉन्टेस्ट में गाना था वो पहचान लिया एंड उन्होंने फटाफट आंसर भी दे दिए। लेकिन अगर आप वो हैं जिन्हें समझ नहीं आया तो एक और बार आपको मौका दे रही हूँ कि सुनो, मैं आंसर अभी ही बता रही हूँ।

0: का नाम है मैंने प्यार किया एंड गाने का नाम है आते जाते हंसते गाते। मेरी मम्मी ने जो है आज आप सबके लिए कॉन्टेस्ट डिजाइन किया था, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही आपके लिए गाने ढूंढ के लाने चाहिए, क्योंकि आपके लिए मम्मी के ढूंढे हुए गाने काफी मुश्किल पड़ रहे हैं। वो क्या है ना कि मेरी मम्मी टीचर है, उन्हें टफ क्वेश्चन पेपर बनाने की आदत है। सो कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कल फिर से इसी टाइम पर जो है हम ये कॉन्टेस्ट खेलेंगे, तो जितने भी लोगों ने आंसर दिया कंग्रेचुलेशंस, आप सबका आंसर बिल्कुल सही था। लेकिन अब वक्त जो है हो गया है आयुष्मान खुराना के अमेजिंग वाले गाने को जो है सुनने का, क्योंकि उनका हैप्पी वाला बर्थडे है। जरा वॉल्यूम बढ़ाकर आयुष्मान खुराना का अमेजिंग वाला गाना जो है वो एंजॉय करो, और आपकी कोशिश के साथ कहते रहो जियो पिंदास। साडी गली आजा कहने से लेकर
1: साडी गली आजा
0: नैना का कसूर ढूंढने तक, गिटार की धुन पर जिसने हर कहानी को गीत बनाया और हर आम इंसान की जिंदगी को बॉलीवुड के पर्दे पर खास दिखाया, आज उसी मल्टी टैलेंटेड स्टार आयुष्मान खुराना को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे।

0: कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: मूवी का नाम मलंग एंड दिशा पाटनी आदित्य रॉय कपूर की अमेजिंग मूवी ऐसा मैं कहना चाहती हूँ, लेकिन थी नहीं उतनी अमेजिंग। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, आदित्य और रॉय कपूर जो है अभी मूवीज कर रहे हैं, अच्छी मूवीज कर रहे हैं, अच्छा कॉन्टेंट दे रहे हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं वो ओके जानू वाला जो आदित्य रॉय कपूर है वो वापस चाहिए यार। एक बार कोई जाए तो ले जाए पुराने ज़माने से, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है वैसे तो टाइम, लेकिन उस टाइम से वो वाला आदित्य रॉय कपूर लेकर आ जाइए जब वो सबके क्रश बन गए थे। यस, वो वाला आदित्य रॉय कपूर जो सबको पसंद था। सो आप अगर इस बारे में वोट करना चाहते हैं तो 3311063 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने के लिए आई हुई थी, एंड आदित्य रॉय कपूर के चार्म में जो है खोकर हम इस बारे में बात ही नहीं कर पाए। सो मैं ये बताना चाह रही थी आपको कि अगर आप जो है अपने ऑफिस जाकर अपनी टीम को देख रहे हैं कि यार वो बहुत मोटिवेटेड ही नहीं है, या वो काम करने में उनका मन नहीं लग रहा है, सब जो है सैड बैठे, सो आपको जरूरत है हैप्पीनेस लाउंज की। हाँ जी, और हैप्पीनेस लाउंज लेकर कौन आएगा? रेडियो ऑलिव की टीम आएगी अपने आरजेस के साथ। सो आपको अगर अपनी अपने ऑफिस में रेडियो ऑलिव की टीम को बुलाना है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आपको HL यानी हैप्पीनेस लाउंज लिख कर 3311063 पर मैसेज करना है, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी। तो अगर आप कोई बिजनेस ओनर है, मैनेजर है या फिर HR है और आप चाहते हैं कि आपकी टीम जो है वो रिवाइव हो जाए, रिजुविनेट हो जाए एंड फन करने लग जाए, खुश रहे, तो यार देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हैप्पीनेस लाउंज का आपके ऑफिस में आना। तो 3311063 इज़ द नंबर, जल्दी से व्हाट्सएप कर दो HP यानी हैप्पीनेस लाउंज जो है HL लिख कर जल्दी से मुझे मैसेज करो। एंड बाकी एक ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो वॉल्यूम बढ़ाकर आप इसे भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड थोड़ी सी देर में आपको ऑलिव अपडेट्स में सारी अपडेट्स जो भी आपको सुननी ज़रूरी हैं वो सब मिलने वाली है। सो वॉल्यूम बढ़ाकर इंजॉय करो और स्टे ट्यून्ड रहो आपकी कशिश के साथ। कहते रहो सी यू बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year.

0: Suntem number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.
1: जब मिल सकता है और भी ज्यादा तो फिर वही रेगुलर रिचार्ज क्यों?
2: अपने हाला नंबर पर पाइए ओरिडू का योर स्पेशल ऑफर
1: ज्यादा वैल्यू के साथ स्पेशली आपकी जरूरतों के हिसाब से
2: अपना ऑफर चेक कीजिए ओरिडू ऐप पर या फिर अपनी नजदीकी रिटेलर से मिलें
1: एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू

0: छोटी सी कक्षा में दीवारों पर अक्षर लिखे हैं, वो अक्षर जो अपने साथ कहानियां लेकर आते हैं, हमारे देश के गीत और वो बोली जो लाखों को जोड़ती है। कभी एक शिक्षक ने एक छोटे से शब्द से संस्कृति समझाई और आज भी एक बच्चा अपनी पहली कविता हिंदी में पढ़ता है, अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ। हिंदी दिवस 14 सितंबर हमें याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं, यह हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और एक पुल है जो पीढ़ियों को जोड़ता है।
1: On the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Alkhol.
2: Hi everyone, I am Arman Malik, 106.3 FM Radio Olive, Jio Bindas.
3: नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
4: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: यस, ये जान मान तो ठीक है, लेकिन मेरे सीने में तेरा दिल धड़के, तेरे सीने में मेरा दिल धड़के, ये कैसी कैसी बायोलॉजी को जो है चैलेंज करने वाली बातें आप कर रहे हैं। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पे उठाया। एंड कई बार लिरिसिस्ट जो है वो एकदम ही साइंस को चैलेंज कर देते हैं। माना आप जो है रोमांस में है, माना आप प्यार जो है वो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन इतना मेरे सीने में तेरा दिल धड़ धड़ धड़के ठीक है गाइस, कोई बात नहीं। लेकिन वैसे देखो एक बहुत ही रोमांटिक चीज़ मैं दिखाने वाली हूँ। सो अगर आपके पास आपकी पार्टनर जो है वो बैठी हुई है एंड आप उन्हें जो है खुश करना चाहते हैं, तो उन्हें बस कहिए कि ज़रा आसमान की तरफ देखो, तुम्हारी मिरर वाली रिफ्लेक्शन अभी तुम्हें आसमान में दिखेगी, क्योंकि आज आसमान में चांद जो है वो बड़ा ही खूबसूरत दिखने वाला है। तो थोड़ा सा वक्त निकाल के मून और वीनस जो साथ में दिखने वाले हैं, स्टनिंग यू नो व्यू को इन्जॉय ज़रूर करना। एक मिनट, गाड़ी चलाते हुए ऊपर मत देखने लग जाना, ट्रैफिक पर थोड़ा ध्यान दो, रोड पर थोड़ा ध्यान दो, लेकिन हाँ चांद वहीं रहने वाला है, वीनस भी वहीं रहने वाला है, तो आराम से देख सकते हो। सो जब भी गाड़ी रुके, सिग्नल पे खड़े हो या फिर गाड़ी पार्क कर रहे हो तो ज़रूर से देखना। एंड वैसे मैं जो है अभी स्टूडियो में हूँ, तो अगर आप लोगों को वक्त मिले, मौका मिले, तो एक बार ज़रूर फोटो खींच के मुझे भेज देना 3311063 पर। फिलहाल ये अमेजिंग वाली साइट जो है इंजॉय करो एंड खुद को थोड़ा सा वक्त दो एंड अपने लव्ड वंस को भी थोड़ा सा वक्त दो। एंड देखो एक बहुत ही रोमांटिक तरीका मैंने आपको बता दिया है, तो इसको यूज़ करते हुए मुझे ज़रा क्रेडिट दे देना मेरे व्हाट्सएप पे आके 3311063 पर। फिलहाल इस ज़बरदस्त बात बाद एक जबरदस्त हिट गाना तो बनता है, सो वॉल्यूम बढ़ाकर ये गाना एंजॉय कीजिए। बाकी आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: स्पीच देना और बात कहना दोनों अलग चीजें हैं। स्पीच खत्म हो जाती है लेकिन अच्छी बात खत्म होने के बाद भी साथ रहती है। शायद आपके पास भी वही बात है जो सिर्फ कही नहीं सुनी जानी चाहिए। The Qatar Talks is back with its 21st edition on the hunt for Qatar's next champion speaker. 2-3 minute का वीडियो स्पीच अपलोड कीजिए 22nd September तक on www.thequatartalks.com पर। Open to all residents of Qatar. Grand finale is on 13 November 2026. The Qatar Talks 2026. Communicate, connect and conquer.
1: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर। जियो बिंदास,
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद। बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

0: सुनिधि चौहान विद इमेंस लव एंड अमेजिंग वॉइस. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है. अब देखिए यार, जेंजीज जो है ये हर जगह कमाल कर रहे हैं. मतलब आज ही मैंने अपने बॉस से जो है शेयर किया एक पोस्ट बेसिकली, जिसपे मेल लिखे हुए थे सारे जितने भी जेंजीज ने सैवेज रिप्लाईज किए हैं अपने बॉसेस को. एंड रिप्लाई में मुझे मिला कि इंस्टाग्राम मत चलाओ, काम करो, वरना तुम्हें भी ऐसे मेल लिखने पड़ेंगे. क्या यार, ये बॉस आप बहुत सीरियस ले लेते हैं यार मीम्स को. वैसे आज एक न्यूज़ जो है वो मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ कि इंस्टाग्राम पे ही मुझे पता चला कि एक जेंजी ने जो है जॉब लेने से ही मना कर दिया, क्योंकि जो जॉब देने वाला है यानी जो उस कंपनी का सीईओ था वो एक घंटे देरी से आया था. एंड इस जेंजी को जो है वेट करना पड़ा, इस इंसान को वेट करना पड़ा. एंड इन्होंने पहले वेट किया एक घंटा, उसके बाद इंटरव्यू में कहा कि मुझे इंटरव्यू नहीं देना क्योंकि मैं जो है, आप इंटरव्यू को लेकर इतने सीरियस नहीं हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी अर्जेंसी है. एंड मैं ऐसी जगह जहाँ पे मेरी वैल्यू नहीं है वहाँ काम नहीं करना चाहता. वेल डन ब्रो, मतलब मैं भी तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा करना चाहती पर मैं कर नहीं पाती हूँ, वरना लोगों को मेरे टाइम की वैल्यू ही नहीं है. 3311063 पर आपको क्या लगता है, क्या ऐसा सही किया, क्या इस बंदे ने सही किया और क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ये आप मुझे बताइए 3311063 पर मैसेज करके. फिलहाल आयुष्मान खुराना का एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, राता कालियां गाने का नाम है. इंजॉय करो वॉल्यूम बढ़ाकर. बाकी थोड़ी सी देर में जेंजी डिकोडेड में आज एक जेंजी स्लैंग के बारे में बात करने वाले, बहुत अमेजिंग वाले. सो स्टे ट्यून्ड, ट्यून विद अस. साडी गली आजा कहने से लेकर
1: साडी गली आजा सानू
0: नैना का कसूर ढूंढने तक,
1: नैना दा क्या कसूर वे कसूर वे कसूर.
0: गिटार की धुन पर जिसने हर कहानी को गीत बनाया और हर आम इंसान की जिंदगी को बॉलीवुड के पर्दे पर खास दिखाया, आज उसी मल्टी टैलेंटेड स्टार आयुष्मान खुराना को रेडियो ऑलिव विश करता है हैप्पी बर्थडे.

0: Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Gio Bindas.
1: गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ
2: बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
3: Zabardast evening. Make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets, and department stores where the world comes to shop.

0: नमस्कार वणकम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ।
1: रेडियो 106.3 जे ओ बिंदास। ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

मूवी शिल्पा राव की अमेजिंग आवाज एंड कैटरीना कैफ के अमेजिंग एंड किलर डांस मूव्स एंड शी इज सर्विंग सम ऑफ द लाइक बेस्ट बॉलीवुड आउटफिट लुक्स. मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है. मुझे इतना ज्यादा बचपन से पसंद है कैटरीना कैफ का इस गाने में लुक. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूँ आपकी कसुश एंड शो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बिड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है. अब देखिए यार, बॉलीवुड के मुझे ऐसा लगता है कुछ आइकॉनिक लुक्स पे हमें बात करनी चाहिए. सो थोड़ी सी देर पे इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आई थी कि कतर मीटियोलॉजी डिपार्टमेंट का ये कहना है कि जिस तरीके से टेम्परेचर अभी पिछले कुछ टाइम पे गिर रहा है, बढ़ भी सकता है. Yes, बढ़ सकता है टेम्परेचर. कई सारे एरियाज में जो है ज्यादा गर्मी जो है वो महसूस की जा सकती है. सो तैयार हो जाइए, जो खुशी हम महसूस कर रहे थे अब वो थोड़ी सी गर्मी में बदलने वाली है. फिलहाल देखिए बहुत ही अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए. और थोड़ी सी देर में प्रॉमिस के अनुसार बात करने वाले हम बॉलीवुड के कुछ आइकॉनिक लुक्स के बारे में. सो स्टे ट्यून्ड. और आपका बॉलीवुड का फेवरेट मतलब जो लुक है किसी भी यू नो कैरेक्टर का, वो आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर. जल्दी से मैसेज करो और अमेजिंग वाला गाना एंजॉय करो आपकी कशिश के साथ. कहते रहो जियो बिंदास.

0: Katar ka number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. 106.3 Radio Olive. Jio
1: Bindas. Time check. Time check. Brought to you by Danatal Pahar. The ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: So, ji, waqt ho gaya aapko. Waqt batane ka. Is waqt studio clock mein ho rahe hain 8:11. That is 8:11. Stay tuned. Jio Bindas.
0: Radio Olive Pay. Radio Olive Pay. Story of the day.
3: Story of the day. Oh, oh, oh, oh. Story of the day.
4: एक छोटी सी कक्षा में दीवारों पर अक्षर लिखे हैं वो अक्षर जो अपने साथ कहानियां लेकर आते हैं हमारे देश के गीत और वो बोली जो लाखों को जोड़ती है कभी एक शिक्षक ने एक छोटे से शब्द से संस्कृति समझाई और आज भी एक बच्चा अपनी पहली कविता हिंदी में पढ़ता है अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान के साथ हिंदी दिवस 14 सितंबर हमें याद दिलाता है कि भाषा सिर्फ शब्द नहीं यह हमारी पहचान है हमारी संस्कृति है और एक पुल है जो पीढ़ियों को जोड़ता है
5: Ready?
6: Ready?
5: To learn?
6: Yes!
5: To play?
6: Absolutely!
5: To grow?
6: With Maserati!
4: This school season, har din ko fuel kare delicious aur nutritious Maserati fresh products ke saath.
7: Milk, cheese, yogurt, lemonade, eggs!
4: Breakfast se lekar lunchbox aur snacks tak. Maserati hai aapki puri family ke liye perfect choice.
8: Grow with Maserati, freshly from Qatar.
9: Assalam, pranam, namaskar, vanakkam. I am Jackie Shroff, Radio Olive, Bolo Bindas.
10: बातें नहीं, एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ऑलिव पर जियो बिंदास
11: Zabardast Evening.
12: Zabardast Evening. Make your drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
13: Lulu. Hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: लुक्स एज पूजा, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन, मतलब बहुत ही खूबसूरत लगे हैं इस मूवी में ये। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पर उठा रखा है। अब देखो यार, बात हम कर रहे थे बॉलीवुड के आइकॉनिक लुक्स की, कैरेक्टर्स की, एंड मुझे जो है सबसे पहले मैं मैसेज पढ़ना चाहूँगी असमा जी का, जिन्होंने लिखा है कैटरीना कैफ का रेस मूवी के सॉन्ग में जो है, जिसमें वो डांस कर रहे हैं, वो वाला लुक सबसे ज़्यादा बढ़िया लगता है। एंड इस गाना यानी गाने के बारे में, यानी ज़रा ज़रा टच मी वाले गाने के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो ड्रेस है ये बहुत वायरल हुई है एंड आज भी बहुत ज़्यादा लोग जो है इसे बनवाते हैं, कस्टमाइज़ करवाते हैं, लेकिन ये कैटरीना कैफ की खुद की ड्रेस थी। यस, उन्हें सेट पे से उनके डिज़ाइनर ने ये ड्रेस नहीं दी थी, ये कैटरीना कैफ खुद अपने लिए लेकर आई थी। बाकी इस ज़रा ज़रा टच मी वाले लुक के बाद मुझे ऐसा लगता है और लुक के बारे में बात कर लेनी चाहिए। सो सबसे पहले लिस्ट में, जो मैंने लिस्ट बनाई है अभी, उसमें सबसे पहला नाम है सुष्मिता सेन का, जहाँ पर उन्होंने मैं हूँ ना मूवी में अमेजिंग गॉर्जियस साड़ी पहनी है और अपने फोल्डर्स के साथ मैच करी है। सो दैट वाज रियली रियली रियली गुड। और देखो यार, आइकॉनिक कैरेक्टर लुक्स की बात करते हैं, सो हम पू के कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं भूल सकते, कभी खुशी कभी गम मूवी में करीना कपूर का जो बोले चूड़ियाँ वाला जो आउटफिट है, उसे तो यार कोई नींद में भी पहचान सकता है। एंड आजकल Y2K के नाम पर काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेंड है, सो दिस इज समथिंग। अगर मैं नई मूवी की बात करूँ, सो करण जौहर अगेन सर्विंग एन अमेजिंग लुक, व्हाट झुमका में जो है जो ड्रेस पहनी है, जो साड़ी पहनी है बेसिकली आलिया भट्ट ने, इट इज़ अमेजिंग। एंड सच में आप देखिए कि किस तरीके से साड़ी को एक नया मॉडर्न वर्जन जो है वो आलिया भट्ट ने दिया है। एंड इस मूवी में जितनी साड़ीज पहनी है वो साड़ी बहुत ज़्यादा फेमस हुई है, ओम्ब्रे इफेक्ट वाली स्पेशली कितनी ज़्यादा फेमस हुई थी। साड़ीज की बात कर ही रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बदतमीज दिल वाली ब्लू साड़ी कोई नहीं भूल सकता, कितनी सारी लड़कियों ने अपने फेयरवेल पे वो वाली साड़ी पहनी थी ना, दीपिका पादुकोण की वो ब्लू वाली साड़ी। बाकी ऐसे ही बहुत सारे लुक हैं साड़ी की। अगर मैं बात करूँ तो देसी गर्ल वाला जो लुक था प्रियंका चोपड़ा का, वो भी बहुत आइकॉनिक है। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ लड़कों के लुक की, सो अगर मैं राजू के लुक की बात ना करूँ, जिसमें उन्होंने एक चटक रेड कलर का पैंट पहना है एंड प्रिंटेड शर्ट पहनी अक्षय कुमार ने और चश्मा लगाया हुआ है, वो वाला मीम मटेरियल लुक देखिए आइकॉनिक तो है। सो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन एक मेरा फेवरेट लुक जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, लड़के ना पिंक कलर की शर्ट में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते हैं। एंड इसका जो ट्रेंड है वो बॉलीवुड में ऑफिशियली मुझे ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हंसी तो फंसी मूवी से शुरू किया था। सो यस, सर्विंग ग्रेट लुक्स बॉलीवुड अमेजिंग, मतलब ऐसे करते रहो, मैं तो बस यही चाहती हूँ। बाकी कूल सॉन्ग ऑफ द आर आपके रेडियो सच पर, जरा वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जीव बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास बातें नहीं एनर्जी का बूस्टर मिल रहा है क्योंकि चल रहा है जबरदस्त इवनिंग सिर्फ रेडियो ओलिव पर जियो बिंदास
2: Zabardast evening. Make your drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

देखिए जी, चोरी चोरी चुपके चुपके कुछ नहीं हो रहा है, एकदम बढ़िया तरीके से रेडियो पे सबको बता के ये किया जा रहा है कि आपकी बेसिक बोरिंग इवनिंग्स को जबरदस्त बनाया जा रहा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिस पर, मैं हूँ आपकी कसुशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर जो है हम बहुत सारी अमेजिंग बातें जो है वो कर रहे हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओलंपिक्स से रिलेटेड है। हाँ जी, सो कतर ओलंपिक्स कमिटी ने जो है एक हेल्थ एडवाइजरी जो है वो जारी करी है कतरी एथलीट्स के लिए जो एशियन गेम्स जाने वाले हैं जापान में। सो एथलीट्स को जो है एडवाइस किया गया है कि अर्ली प्रिपरेशन जो है वो शुरू कर दें, क्योंकि जापान का जो माहौल है, मौसम है, वो काफ़ी अलग होता है। एंड हम नहीं चाहते कि हमारे जितने एथलीट्स हैं वो स्ट्रगल करें। एंड बाकी ये जो एडवाइजरी है ये वैसे तो एथलीट्स के लिए, लेकिन आपको भी मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि मौसम बहुत बदल रहा है, काफ़ी सारे लोग अभी वेकेशन से आ चुके हैं या धीरे धीरे करके आ रहे हैं, एंड मौसम का एक बहुत बड़ा शिफ्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना ज़रूरी है। फिलहाल दिल इबादत गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, ज़रा वॉल्यूम बढ़ाकर इन्जॉय कीजिए आपकी कसुस के साथ, और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: करना हमारे हाथ में तो नहीं है, वो खुद के हाथ में होता है। तो बस पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहिए एंड आपके लिए जबरदस्त चीजें, जबरदस्त गाने, जबरदस्त कंटेंट हम ऐसे ही लाते रहेंगे। वेलकम जी 106.3 रेडियो अलफेर, मैं हूँ आपकी कशुशन। आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे थे जबरदस्त इवनिंग, जहाँ पर आपकी बोरिंग बेसिक इवनिंग को जबरदस्त बनाने का बीड़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने नाजुक कंधों पे उठाई थी, लेकिन अब वक्त हो गया है मेरे यहाँ से जाने का। सो आपको जाते जाते बस मैं यही कहना चाहूंगी कि गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, खाना खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, क्योंकि हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर अगर हमें हाय हेलो कह दीजिए, और अगर मिस करें तो 3311063 पर अगर मैसेज भी कर सकते हैं। फिलहाल ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आरआर ऐप के रेडियो सेट्स पर अपना बहुत सारा ख्याल रखना। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।
1: रेडियो ऑलिव पर song of the hour, ye gana।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: ये है मिडनाइट लाउंज
0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद
2: नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल पासपोर्ट ऑफिस कराफा.
3: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: ये है मिडनाइट लाउंज.

जेंटलमैन की यहाँ कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: मॉर्निंग से नाइट शेड्यूल है टाइट.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: चांदनी रातें, चांदनी रातें।
0: अब सुनिए